सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456651 या 9707-06-575।
10: श्रोता लोग, सुबह सवेरे भक्ति गीत के बाद स्वागत बा रउआ सब के राउर आपन प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। सप्ताह ये भी जानता नहीं कि ये कार्यक्रम में हम बतावे नहीं ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, जैसे रवा अपना स्वास्थ्य के बहुत ही आसानी से देखभाल कर सकता नहीं। तो चलिए, अब बिना देरी कहले आगाज कर जाओ आज के कार्यक्रम के, जे में हम बतावे जात बानी सबसे पहले गैस के शिकायत के समाधान। गैस के शिकायत दूर करे खातिर कब्ज और अपच दूर कई जरूरी है, काहे कि यही से गैस बनेला और गैस से ही सारा बीमारी होला। तो इसे निजात पावे खातिर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, अजमोद या अंजवाइन, सेंधा नमक, सफेद जीरा, काला जीरा और भुनल होकल हींग, इस सब के समान मात्रा में कूट पीस के महीन चूर्ण कर ली। ये चूर्ण के आधा चम्मच मात्रा में लेके संभाग घी मिला के भोजन के साथ खाए से मंदाग्नि, अपच दूर होला, वात प्रकोप शांत होला। एके 8 दिन लगातार लेवे से ई समस्या से निजात मिलेला। और एकर दूसर नुस्खा ई प्रकार है, अजवाइन और काला नमक पीस के समान मात्रा में मिला ली। आ ई चूर्ण के 1 चम्मच मात्रा में गर्म पानी से लेवे से अधोवायु निकल जाला और ई गैस के प्रकोप शांत हो जाला। पेट पर सेक करे से भी ऐसे लाभ होला। तो दोस्तों चली अब जानल जाओ जी मिचलाए के घरेलू नुस्खा। फूड पॉइजनिंग से और ई गलत खान पान से उल्टी होके लागेला। पित्त कुपित होके पाचन क्रिया में बाधा पड़े, दूषित पदार्थ के सेवन करे आदि कारण से पेट के आहार वेग पूर्वक मुख मार्ग से बाहर निकलेला। एके वमन या उल्टी होकल कहल जाला। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, सेंधा नमक, बीट नमक और इस सज्जी खार। सब 10-10 ग्राम लेके कूट पीस ली और सबके मिला के शीशी में भर ली। आ ये चूर्ण के दो दो रत्ती मात्रा में शहद में मिला के 3-3 घंटा पर चाटे के चाहिए। एक ग्लास पानी में थोड़ा सा नींबू के रस और शक्कर घोल ली। एक नींबू के शिकंजी कहल जाला। ये शिकंजी पिए से उल्टी बंद हो जाला। मोर पंख के नीला रंग के चांद के काट के जला ली और इराक हो जाए तब पीस के शीशी में भर ली। इराख दूरती और छोटी इलायची के पीसा लोकल दाना दूरती लेके शहद में मिला के चाटे से उल्टी होकल बंद हो जाला। तो श्रोता दोस्त अब हम बताएं चेहरा से दाग धब्बा हटावे के कुछ घरेलू नुस्खा। सूखल हल्दी के गांठ के नींबू के रस में मिला के लगावे से भी दाग धब्बा तेजी से मिटे लागेला। सूखल त्वचा के दाग धब्बा मिटावे खातिर दूध में चंदन के लकड़ी घिस के लगाई। तैलीय त्वचा के दाग धब्बा मिटावे खातिर चंदन के बूरा गुलाब जल में मिला के लगाई। ये प्रयोग विशेष रूप से गर्मी खातिर लाभकारी है। चोट के निशान पर लाल चंदन रोज पानी में घिस के लगाई। ये कैला से 20 दिन में फायदा नजर आवे लगी। टमाटर में नींबू के 10-12 बूंद मिलाई और ये मिश्रण के चेहरा पर मले से दाग धब्बा दूर होला। अक्सर पेट के खराबी से चेहरा पर दाग धब्बा नजर आवेला। अतः दिन में कम से कम 3 बार नींबू पानी पी। इसे कुछ ही हफ्ता में चेहरा चमके लगी। तो दोस्त लोग ई तरह ला चेहरा के दाग धब्बा हटावे के घरेलू नुस्खा। चली अब जानल जाओ गर्मी में जब चक्कर आवे तो का करे के चाहिए। अक्सर कमजोर व्यक्ति के चक्कर आवेला। बैठे रहे के बाद उठे पर आँख के सामने अंधेरा छा जाला और ये चक्कर आवेला। ये स्थिति में एक सफल सिद्ध नुस्खा हम बतावे जाता नहीं। एगो ककड़ी, सूखल लंबा या गोल लौकी या तुम्बी जौन पाके के बाद अपने आप सूख चुकल होके। लेके एके डंठल के तरफ से काट दी ताकि अंदर के पोला दिखाई दे। एकरा अंदर बीज या सूखल गुद्दा होके ता हिला हिला के गिरा दी। एमे ऊपर तक पानी भर के 12 घंटा तक रखी। फिर हिला के पानी निकाल के साफ कपड़ा से 2 बार छान दी। ऐसन बर्तन में भरी जेमे राउर नाक डूब सके। नाक डुबा के खूब जोर से सांस खींची ताकि पानी नाक से अंदर चढ़ जाए। कैला से दिन भर नाक से पानी टपकत रही। पानी खींचे के बाद नाक नीचे करके आराम करी। ई उपाय से ई व्याधि सदा खातिर नष्ट हो जाई। तो दोस्त लोग, अब हम बताएं सांस में ताजगी लावे के घरेलू नुस्खा। खान पान में परहेज ना कैल, सोते समय दांत साफ ना कैल, पेट साफ ना रहे व कब्ज रहे से मुंह से बदबू आवेला। कई बार भरपूर पानी ना पिए से भी मुंह से बदबू आवेला। कुछ लोग के मुंह से बदबू आवल प्राकृतिक भी रहेला। राउर मुंह से बदबू आवे पर रउआ साथ बात करे वाला हीन नजर से देखेला और ई रउआ से दूर रहे के प्रयास करेला। अगर रउआ ई परिस्थिति से गुजरतानी तो यहाँ हम कुछ टिप्स बतावे जातानी। जैसे रउआ अपना मुंह से आवे वाला बदबू से छुटकारा पा सकतानी, नीम या बबूल के नरम डाली के ब्रश बना के दांत साफ करे से दुर्गंध दूर हुई। पांच ग्राम सौंफ या धनिया या इलायची चबावे से मुंह शुद्धि होला। इलायची और पुदीना डाल के पान चबाई लाभ कर। दालचीनी और ई सूखल पुदीना पत्ती डाल के बनावल गईल घोल से गरारा कईल दुर्गंध मिटावेला। इलायची चबावल भी दुर्गंध रोकेला। एक कप पानी में जीरा के तेल के दो से तीन बूंद डाल के गरारा करे से लाभ होला। और ई सबसे महत्वपूर्ण ई है कि सोते से पहले मंजन करी। पानी भरपूर पी, दोनों समय शौच जाई, जल्द हजम करे वाला भोजन करी और केहू से भी बात करी तो 2 फीट के दूरी से बात करी। तो दोस्तों, अब ई कार्यक्रम से हमरा के दी जाए के इजाजत। फिर होई हमार मुलाकात काल कुछ डिफरेंट नुस्खा के साथ। नमस्कार।
11: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
12: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
13: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
14: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
13: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
12: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
13: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
15: कॉल करें 87-894-18744।
16: ठक ठक।
17: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा, मिला ही नहीं।
17: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
19: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
17: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
19: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
20: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा।
21: भाई साहब, एक्सक्यूज मी।
22: हाँ बोलिए।
21: रहने की जगह मिलेगी?
22: हाँ मिलेगी। ए जोटे, इधर आओ। कितने दिन के लिए चाहिए?
21: बस आज रात के लिए।
22: छोटू बेटा, भैया को पीछे वाले कमरे तक छोड़ के आ जाओ। वो क्या है ना, बोल नहीं सकता बेचारा, तो मैं ले आया। जाओ छोटे, भैया को लेकर जाओ।
21: अच्छा, शुक्रिया। पर आप इतने छोटे बच्चे से काम करवाएंगे?
22: भूखा रहेगा तो मर जाएगा, काम करेगा तो खाने मिलेगा ना सर। देखिए, ऐसे अकेले बैठा था, इसका कोई नहीं है शायद दुनिया में। खैर चल छोटे, काम कर।
21: थैंक यू बेटा, अब जाओ।

0: हाय गाइस, आई एम नील और ये है आज से हम सब तुम्हें गणेश बुलाएंगे।
1: हे हाय ब्रो।
2: हे हाय नील।
0: वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
1: अरे वी वर जैमिंग, अब हम ना स्टोरी टेलिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। जॉइन अस, कम ऑन।
0: हाँ श्योर, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ?
3: कहानी सुना सकते हो? कोई भी कहानी।
0: भोलेनाथ की कहानी सुनाता हूँ।
1: भोलेनाथ?
0: भगवान शिव।
3: हो हो, सुनाओ भाई। हर हर महादेव, शुरू करो।
0: तो बहुत साल पहले महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसका नाम था विद्यापति। उसकी भक्ति से शिवजी इतने खुश थे कि उन्होंने धरती पर जाकर उसकी सेवा करने का फैसला किया। और फिर
3: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
4: विद्यापति जी, प्रणाम।
3: प्रणाम, आप कौन?
4: जी, मेरा नाम उगना है।
3: कहिए उगना, यहाँ कैसे आना हुआ?
4: मैं काम के तलाश में हूँ। यदि आपके घर में कोई नौकरी चाकरी का काम मिल जाए तो बहुत बड़ी दया होगी।
5: नौकरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अभी से काम शुरू कर सकते हो।
3: सुधीरा, ये क्या कर रही हो? ये ठहरो, मुझे संभालने दो। देखो उगना, हमें तुम्हें काम पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है। यदि मैं तुम्हें काम पर रख भी लूं तो भी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। कुछ है नहीं मेरे पास।
4: मुझे चलेगा साहब।
3: क्या तुम ऐसे ही काम करना चाहोगे बिना पैसों के?
4: जी साहिबा, आप मुझे पगार नहीं दे सकते, किंतु आप मुझे बस दो वक्त का भोजन भी दे देंगे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका काम कर सकता हूँ। रख लीजिए ना मुझे काम पर, मुझे अपनी सेवा करने का मौका तो दीजिए विद्यापति जी।
5: सुनिए, देखिए उगना एक नेक लड़का है, रख लीजिए ना इसे। हमारी सेवा करने वाला सच में कोई भी तो नहीं है। इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारी सहायता भी।
3: ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनो, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो।
4: कल से क्यों, आज से, अभी से क्यों नहीं?
5: आज अभी से। उगना आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में।
3: सुधीरा।
5: कहिए।
3: सुनो, मैं राजा शिव सिंह जी के दरबार में जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। और हाँ सुनो सुधीरा, मैं उगना को भी साथ ले जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ता लंबा है, साथ हो जाएगा और यदि मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो सहायता भी हो जाएगी।
5: ठीक है उगना, देखो तुम्हारी सेवा में कोई कमी ना रहे।
4: जी साहिबा।
3: उगना, और कितने दूर तक जाना है?
4: अभी समय है साहब।
3: बहुत गर्म है मौसम और मेरा गला सूख रहा है उगना।
4: साहब क्षमा चाहूंगा, पर हमारे पास अब जल शेष नहीं है।
3: उगना, बहुत प्यास लगी है, अब मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, कहीं से जल का प्रबंध करो, अन्यथा मैं प्यास के मारे ही मर जाऊंगा।
4: ठीक है साहब, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। ये लीजिए साहब, जल पी लीजिए।
3: अरे जल लाओ लाओ। असंभव, असंभव है ये।
4: क्या हुआ साहब?
3: ये तो गंगा जल का स्वाद है। इस वन में तुम्हें गंगा जल कहाँ से मिला?
4: नहीं साहब, ये गंगा जल नहीं है।
3: नहीं, असंभव है ये उगना, मैं जानता हूँ ये साधारण जल नहीं है, पवित्र गंगा जल है। और तुम, मेरा मतलब है आप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कौन है आप? प्रभु बताइए कौन है आप,

0: विद्यापति ठाकुर, उठो, उठ जाओ, मेरे चरणों में से उठो।
1: प्रभु, आप मेरे नौकर के वेश में आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैंने आपसे सेवा करवाई, मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।
0: विद्यापति, शांत हो जाओ। तुम मेरे परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से तुमने मुझे प्रसन्न किया है। पुत्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं अपनी सेवा देना चाहता हूँ।
1: ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं आपसे सेवा कैसे करवा सकता हूँ? मैं तो तुच्छ
0: मैं स्वयं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहना चाहता हूँ, किंतु कभी किसी को मेरा वास्तविक परिचय मत देना। जिस दिन तुम किसी को मेरा परिचय दे दोगे, मैं तक्षण ओझल हो जाऊंगा।
1: प्रभु, मैं इससे अधिक और क्या मांग सकता हूँ? मुझे मुझे बिना मांगे आपका सानिध्य मिल गया है प्रभु। जैसा आप ठीक समझे। जय हो, जय हो।

0: उगना सुनो, जंगल से कुछ लकड़ियां बीन कर ले आओ जल्दी।
1: जी साहिबा।
2: ये कहकर उगना दूसरे कामों में लग गया। ये देखकर सुधीरा गुस्से में आ गई और जलते हुए चूल्हे से लकड़ी उठाकर ले आई और उगना को पीटने लगी।
0: उगना, क्या कहा था मैंने तुझे? कहा था ना जंगल से कुछ लकड़ियां बीन कर लाने को, तू भूल गया? अब देख, एक बार तेरी पिटाई हो जाएगी ना तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी और कभी नहीं बोलेगा।
1: आ, आ,
0: ये ले,
1: आ,
0: ये ले। आ,
3: सुधीरा, रुको, रुको सुधीरा, आ, रुक जाओ, रुको, आ, रुको, रुको, आ, रुको, मैंने कहा रुक जाओ सुधीरा।
1: ये तुम क्या कर रही हो सुधीरा?
0: इसकी अकल ठिकाने लगा रही हूँ। आपके लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गया था ये, इसे ठीक कर रही हूँ।
3: अनर्थ कर रही हो तुम सुधीरा, अनर्थ कर रही हो,
1: घोर अनर्थ। साक्षात भगवान शिव है ये, महादेव। अनर्थ है ईश्वर।
0: क्या क्या कहा आपने? ये क्या, ये अदृश्य कैसे हो गया?
1: हे ईश्वर, ये तुमने क्या किया सुधीरा? भगवान शिव के साथ दुर्व्यवहार किया तुमने? तुम ये कैसे कर सकती हो सुधीरा? क्षमा प्रभु, क्षमा कर दो हमें।
0: क्या, वो भगवान शिव थे, हमारे आराध्य? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे मुझे।
2: विद्यापति सुधीरा, अब विलाप करने का कोई लाभ नहीं। मैंने विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी सेवा अर्पण की थी, किंतु सुधीरा, ये तुम्हारे लिए सबक है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि किसी भी मनुष्य या जीव से दुर्व्यवहार करो। ये बात तुम सदैव याद रखना।
4: सही बात है, एकदम सही।
5: हाँ, nobody has the right to mistreat anyone।
4: और क्या, मुझे तो लगता है कि अगर कहीं भी ऐसा होते हुए देखें तो हमें रोक लेना चाहिए, वरना हम भी उसी गलती का हिस्सा हुए ना।
6: That's right। तो फिर आप जानते हैं ना आपको क्या करना है?
4: क्या करना है मतलब?
6: जब आप यहाँ आए तो आपको रूम तक किसने छोड़ा?
4: इस बच्चे ने, गणेश ने।
6: तो आपको नहीं लगता कि किसी के साथ मिसट्रीटमेंट हो रही है?
5: यू मीन चाइल्ड लेबर
6: एंड चाइल्ड अब्यूज। इस बच्चे का शोषण किया जा रहा है, ये सिर्फ क्राइम नहीं है, मॉरली भी गलत है।
4: यू आर राइट नील। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस कंप्लेन?
7: अरे साहब, आप कुछ ज्यादा ही बात को बढ़ा रहे हैं।
6: बात को बढ़ा रहा हूँ?
4: आप रहने दीजिए मैनेजर। वेट, मैं अभी ना पुलिस को सब बताता हूँ।
6: पुलिस कंप्लेंट इकलौता सॉल्यूशन नहीं है।
7: अरे सर, मुझे पुलिस में दे दोगे तो इसका ध्यान कौन रखेगा? आप
5: चुप रहिए। नील, तुम बोलो, तो फिर अब हम क्या करें?
6: तुम लोग इस बच्चे की फैमिली को ढूंढने में हेल्प कर सकते हो, है ना?
4: ऑफ कोर्स कर सकते हैं।
8: ठीक है गाइस, मैंने गणेश का पिक्चर लिया है और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है।
5: हाँ, मैं भी यही कर रही हूँ।
6: परफेक्ट।
7: सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं सर।
6: अच्छा, और आप जो कर रहे हैं वो ठीक है?
7: मैंने ऐसा क्या किया है सर?
6: जब आपको ये बच्चा मिला था तो आपने इसकी फैमिली को ढूंढने की जगह उसे काम पर रख लिया, उसे मारा भी। चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड अब्यूज के बारे में सुना है कभी?
7: सर,
6: आप जानते हैं, आपने सिर्फ क्राइम ही नहीं किया है,
5: आप मॉरली भी गलत है मैनेजर।
4: आपको किसने राइट दिया था इस पे हाथ उठाने का?
7: जब बच्चा गलती करता है तो मारते हैं ना साहब माँ बाप उसको। मैंने कुछ अलग तो किया नहीं, मेरे सिवा इसका है ही कौन? अब गरीब ऐसे ही बड़े होते हैं साहब।
6: बात बस इतनी है कि आपका हक नहीं है किसी को भी इस तरह से ट्रीट करने का, फिर चाहे वो कोई भी हो। और आप कैसे जानते हैं कि इसका इस दुनिया में कोई है या नहीं? क्या पता किसी अच्छे बड़े खानदान से हो ये?
5: एक सेकेंड। हेलो, यस, ओएमजी, परफेक्ट परफेक्ट, आई विल शेयर द एड्रेस विद यू, थैंक यू।
6: क्या हुआ?
5: एक कपल है जो इसके पेरेंट्स होने का क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूएस में रहते हैं और किसी प्रॉपर्टी परचेज के लिए इंडिया आए थे और तभी एक हो गया। कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली लगती है।
6: मैनेजर साहब, अब कुछ कहना है आपको?
7: माफ कर दीजिए मुझे सर, मैं समझ गया आप क्या समझाना चाह रहे हैं।
6: अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे?
7: मैं चाइल्ड लेबर नहीं रखूंगा, चाइल्ड अब्यूज को रोकूंगा, और इनफैक्ट तो मैं कभी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा साहब।
6: मेरी नजर रहेगी आप पर मैनेजर साहब, ठीक है?
7: हाँ सर, हाँ सर।
6: ठीक है, तो अब मैं भी चलता हूँ।
5: तुम कहाँ जा रहे हो नील? सुबह तो हो जाने दो।
6: नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, मुझे चलना चाहिए, लेट हो जाऊंगा।
9: अरे ऐसा कहाँ जाना है तुम्हें?
6: भोलेनाथ के धाम जाना है।
5: यू मीन अमरनाथ?
6: हाँ।
9: गाइस क्या कहते हो, नेक्स्ट ट्रिप अमरनाथ का करें?
6: परफेक्ट प्लान है, मिलते हैं वही।
5: अरे नील नंबर तो देते जाओ।
6: अब नंबर तो नहीं है, पर जब तुम वहाँ आओगे तो मैं तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा। हर हर महादेव।
2: एक कहावत है कि हर किसी से अपना व्यवहार अच्छा रखो, क्योंकि ना जाने किस नर में नारायण मिले और किस नारी में शक्ति। तो भिड़ो सोच के देख, क्या तेरे को तेरे बिल्डिंग का वॉचमैन का नाम तक मालूम है? कभी कोई गरीब सिग्नल पर तुझसे मदद मांगने आया और तूने उसको देखकर गाड़ी थोड़ा सा आगे खिसकाया, या फिर किसी रेस्टोरेंट में वेटर को ऐसे बुलाया जैसे कि वो तेरा पर्सनल गुलाम है? अगर ऐसा किया तो एक बार सोच, तूने ऐसा क्यों किया? मैं बताता हूं तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुझे लगता है कि आज तेरी हैसियत उससे ज्यादा है। लेकिन वो सुना है ना, इंसान को चाहिए कि वो वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस वक्त बदले वक्त का मिजाज, अगर वक्त पलटा तो तेरी हैसियत पलटी। तो भिड़ो कभी किसी से बुरा सलूक नहीं करने का, कौन जाने किस रूप में कौन है, शिव अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, शिव सबसे प्यार सिखाते हैं, सबकी इज्जत करना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
14: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
13: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
14: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
13: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
15: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
15: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
15: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करें 62052 1112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8669 73।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, तिब्बत में ग्लेशियर फटने से हुई भारी तबाही, गोपालगंज में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। सिंहासनी महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुल नबी का त्योहार हुआ समाप्त। महिला की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने गंडक नदी के किनारे क्षेत्रों का किया दौरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में भारी तबाही हुई है और नेपाल में बाढ़ की स्थिति के बाद अब गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने इसको लेकर आपात बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने लोगों को घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह भी दी जा रही है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज गोपालगंज के अंचलाधिकारी और सिधवलिया, बैकुंठपुर तथा कुचायकोट क्षेत्र के भी अधिकारियों ने नदी के निचले इलाके में रहने वाले लोगों से अपील की, लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई, साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की भी अपील की जा रही है। माइकिंग के माध्यम से जिला प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया है। आज इसको लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
4: आज जो है सुबह 9 बजे तिब्बत के क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जिसके कारण पानी बहुत ज़्यादा संख्या में नेपाल की तरफ बढ़ा है और वहाँ से वो भारत की तरफ आ रहा है। तो वो जो है अभी पानी का जो गश है वो नारायणी नदी में है और इवेंचुअली वो हमारे गंडक नदी में भी आएगा।

0: लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो पानी का फ्लो है, हम लोग का जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से ज्यादा 3,30,000 क्यूसेक तक जाएगा, और उसमें जो कुछ निचले इलाकों में हो सकता है पानी थोड़ी देर के लिए आए फिर वो निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं सबको मोबिलाइज कर दिया है, सब लोग निचले इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब अगर पानी बढ़ता है तो वो लोग जो ऊंचे वाले इलाके में आ जाएंगे अपने, और जैसे ही पानी निकल जाएगा फिर आगे वो लोग वापस जा सकते हैं। हम लोग जो अभी नाव का परिचालन भी हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और सभी लोगों से यही आपके माध्यम से अनुरोध है कि अनावश्यक नदी वाले क्षेत्र में निचले इलाकों में ना जाएं, आप लोग ऊंचे वाले इलाके में रहें। पानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सिंस ऊपर से नेपाल के क्षेत्र से जब पानी आ रहा है तो हम लोग इसको लाइटली नहीं ले रहे हैं, और हम लोग बहुत सीरियसली इसको लेते हुए सभी पदाधिकारी को भी हम लोगों ने ऐसे ही ब्रीफ किया, और वो लोग फील्ड में रहेंगे सब लोग, और किसी भी तरीके का अगर पानी बढ़ता है उसे किसी भी तरीके की समस्या होती है उसका निपटान हम लोग करेंगे। यहाँ हमारा जिला आपदा केंद्र का कंट्रोल रूम चलता है, वही कंट्रोल रूम एक्टिवेटेड है और उसी के माध्यम से हम लोग पूरे जिले की जानकारी ले रहे हैं।
1: बैकुंठपुर प्रखंड के प्रसिद्ध सिंहासिनी धाम में सिंहासिनी महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। कला सांस्कृतिक विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बाबा धनेश्वर महादेव सिंहासिनी महोत्सव का भव्य एवं रंगारंग आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री और विजय कुमार सिन्हा तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और पूर्व मंत्री जनक राम सहित तमाम लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महोत्सव में अति विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस दौरान कई ख्याति प्राप्त कलाकारों ने इस मंच से अपने कला का प्रदर्शन कर वहां उपस्थित दर्शकों का मनोरंजन किया। इसको लेकर कई तरीके की और खबरें भी चली। डिजिटल मीडिया के लोगों को वहां बैठने की जगह नहीं मिली, जिसके वजह से डिजिटल मीडिया के लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार भी करने का ऐलान किया। तो वहीं कुछ स्थानीय कलाकारों ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिया गया। हालांकि सबके बावजूद कार्यक्रम काफी सफल रहा और भारी संख्या में दर्शकों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुफ्त उठाया। आज पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुल नबी पर्व का समापन हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी तथा कर्मी लगातार पूरे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करते रहे। जगह जगह जुलूस और अन्य कार्यक्रमों के पास भी दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया था। लोगों ने काफी उत्साह, जोश और आस्था के साथ इस त्योहार को मनाया। गोपालगंज में भी पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को संपन्न कराया गया। जुलूस के दौरान निर्धारित मार्गों, चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पर्याप्त मात्रा में तैनात रही। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अपने अपने ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया था। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने जनता से भी निवेदन किया था कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं, और जिला प्रशासन की सक्रियता और सामाजिक सद्भावना के वजह से इस त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त किया गया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह आपसी भाईचारे के साथ त्योहार को मनाया, जिसके वजह से कहीं से भी किसी तरह की कोई विवाद की खबरें नहीं आई। माझा थाना क्षेत्र के श्यामपुर भैंसही में एक महिला की मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक जांच पड़ताल किया। मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतिका के परिजनों द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर पुलिस ने इस मामले में कांड दर्ज करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एक आरोपी राजकुमार यादव का पहले से भी कई आपराधिक इतिहास है। माझा थाना में इसके विरुद्ध पहले से भी लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इन सभी मामलों में पुलिस अब इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। मृत महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतिका से दहेज के रूप में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और दहेज की मांग को लेकर ही उसे प्रताड़ित किया जाता था। मृतिका का पति जब भी घर आता था तो उसके साथ मारपीट करता था। इस संबंध में पति सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना एवं हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सुदामा यादव पिता मुखलाल चौधरी और दूसरे राजकुमार यादव पिता सुदामा यादव, यानी दोनों बाप बेटे हैं। दोनों को पुलिस

0: गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने आज दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गंडक नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज मंगलपुर पुल और आसपास के संबंधित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नदी के जलस्तर की स्थिति, आसपास के क्षेत्रों में संभावित प्रभाव तथा आम लोगों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और गंडक नदी के जलस्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और निचले तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही संभावित स्थिति को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कही गयी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद लोगों से भी अपील किया है। उन्होंने कहा कि निचले एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर स्थानांतरित होने का अनुरोध किया गया। लोगों से बच्चों, बुजुर्गों एवं अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रख रहा है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन के द्वारा आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। आम जनता से कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लोग सतर्क रहें और प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डीएम ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अनावश्यक रूप से नदी के किनारे या जल भराव वाले क्षेत्रों में नहीं जाएं। किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेने की अपील की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। कटिहार थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध स्थिति में घर से गायब हो गई है। उसकी मां ने एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। किशोरी 8 अगस्त को गायब हो गई थी और अब तक उसका कहीं पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद अब आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के छमही गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। NH 27 पर हुए एक हादसे में मां और बेटा दोनों घायल हो गए हैं। इसमें 55 वर्षीय चांद तारा खातून और उनका 24 वर्षीय पुत्र जाहिद बाइक से शहर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया जिसमें दोनों जख्मी हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र में सिरिसिया गांव के पास NH 27 पर एक मक्का लदे हुए ट्रक के ठोकर से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक का नाम सचितानंद यादव है और यह विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहनिया गांव के अनुवत यादव के 38 वर्षीय पुत्र थे। घटना के बाद इनके परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया और मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि आज मृतक का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उनके परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। कटियां थाना क्षेत्र में जमीन का बैनामा कराने के नाम पर पैसों की ठगी करने के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन का बैनामा कराने के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त चुनू शाह को गिरफ्तार किया, जो सोहनरिया थाना कटियां का निवासी बताया जा रहा है। गिरफ्तार करने के बाद आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साइबर थाना की पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी दौरान साइबर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर हथुआ थाना क्षेत्र के इम्पीरियल पब्लिक स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक साइबर एवं साइबर थाना के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों को ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, फर्जी लिंक, OTP शेयरिंग एवं बैंकिंग धोखाधड़ी सहित विभिन्न साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से हुई भारी तबाही, गोपालगंज में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। सिंहासनी महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शांतिपूर्ण तरीके से ईद मिलादुल नबी का त्योहार हुआ समाप्त, महिला की हुई संदिग्ध परिस्थिति में मौत, दो लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिलाधिकारी ने गंडक नदी के किनारे क्षेत्रों का किया दौरा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-0976-575।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
2: 3, 4,

0: 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स,
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-98-51-31-68-07 और 977-97-09-10-7500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00-86-18-51-42-84-905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
2: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
5: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
6: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
7: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
8: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
9: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल ने जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Center begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US holds all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday, and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. More from our correspondent.
12: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing. According to
13: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
13: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
14: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
14: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
13: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
15: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
16: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
15: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
16: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
15: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
17: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
13: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
14: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
13: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
18: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
19: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
20: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
21: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
18: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 पर।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: दो।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा, मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
7: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
8: अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
7: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
8: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
7: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई। गंडक नदी के जलस्तर में आज सुबह से आने लगी है गिरावट। वाल्मीकिनगर बराज पर स्थिति सामान्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राज्य के सभी जिलों के 2-2 महाविद्यालयों में युवाओं की होगी भागीदारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 5 लाख जीविका दीदियों के बीच मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली और दूसरी किस्त की राशि का करेंगे अंतरण। और राजधानी पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में उच्च स्तरीय बैठक कर बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की और सभी तटबंधों तथा बांधों की 2400 घंटे निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी से सटे जिलों को अलर्ट रहने को कहा है। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में आज सुबह से कमी आने लगी है।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।
2: पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। जिले के 10 प्रखंडों के निचले इलाकों में माइकिंग कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने नाव, शेल्टर होम और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने गंडक बराज तथा तटबंधों का निरीक्षण कर जल स्तर की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने और प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा तथा अफवाहों से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसपी की टीमों की तैनाती की गई है। संबंधित जिलों में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ पर्याप्त नाव, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में लगभग 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन की पहली खेप नेपाल भेजी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में भीषण बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और भारतीय नागरिक नेपाल के लोगों के साथ हैं तथा राहत और बचाव कार्यों

0: एवं प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 360 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5 लाख जीविका दीदियों के बीच राशि का अंतरण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री आज 5 लाख जीविका दीदियों को बड़ी सौगात देंगे। श्री चौधरी आज 5 लाख जीविका दीदियों के खातों में कुल 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित करेंगे। 4 लाख जीविका दीदियों को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रूपए जबकि 1 लाख जीविका दीदियों को दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रूपए दिए जाएंगे। पटना में आयोजित कार्यक्रम से 10 हजार महिला लाभुकों को जीविका निधि से 50 करोड़ रूपए का ऋण भी वितरित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में नशा मुक्ति व विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मगध महिला कॉलेज पटना में साइंस ब्लॉक के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे और छात्राओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राजगीर में राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में भी तेजी लाने को कहा। श्री चौधरी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जीविका दीदियों के माध्यम से 25 लाख सौर ऊर्जा इकाइयों का लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और किसानों को निर्धारित मूल्य पर समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी के आधार पर उर्वरक की आपूर्ति में कोई कटौती नहीं की जाएगी। प्रदेश में घुसपैठ कर रहे लोगों की पहचान कर केंद्र सरकार के पुश बैक नीति के तहत उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। पटना में मुख्य सचिव प्रत्यामृत की अध्यक्षता में भारत नेपाल संबंधी मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों को जाली नोट और ऑनलाइन माध्यम से विस्फोटक सामग्री मंगाने जैसे

0: मामलों की जांच तेज करने के निर्देश दिए। राज्य में 9 नई आर्द्र भूमियों को अधिसूचित किया जाएगा। ये भोजपुर, सारण, कटिहार, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण जिलों में स्थित हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री रामचंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। राजधानी पटना में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। दोनों संक्रमित मरीज अगमकुआं और कंकड़बाग के रहने वाले हैं। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जांच में दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज पिछले सप्ताह दिल्ली से पटना लौटे थे। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, रोहतास और सीवान जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट है।
1: दिनांक 27 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, रोहतास एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के राजाघाट साइफन में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। गया जिले के चाकंद थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव से पुलिस ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने, घर में लूटपाट कर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिवान जिले के चामो थाना क्षेत्र के बल्डिया गांव में शराब तस्करों का पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में उत्पाद विभाग का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से जुड़ी खबरों को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जल प्रलय, नेपाल में तबाही, बिहार सहमा। प्रभात खबर ने इसी समाचार को प्रमुखता देते हुए लिखा है, तिब्बत में टूटा हिमनद, नेपाल में 160 से ज्यादा की मौत, 133 भारतीय समेत 1000 से अधिक लापता। दैनिक जागरण ने लिखा है, बेटियों के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू की 3 योजनाएं। दैनिक भास्कर ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के हवाले से लिखा है, पंचायत सचिवों के ट्रांसफर में गड़बड़ी, 36 घंटे में जांच पूरी करें। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, भारत में पहली बार विकसित होगा हाई पावर हेलीकॉप्टर इंजन अरावली। आज अखबार ने लिखा है, पटना में प्रदर्शन करने वाले 70 नामजद सहित 1000 लोगों पर FIR। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई। गंडक नदी के जलस्तर में आज सुबह से आने लगी है गिरावट। वाल्मीकिनगर बराज पर स्थिति सामान्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राज्य के सभी जिलों के 2-2 महाविद्यालयों में युवाओं की होगी भागीदारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 5 लाख जीविका दीदियों के बीच मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली और दूसरी किस्त की राशि का करेंगे अंतरण। और राजधानी पटना में स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की पुष्टि हुई, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
9: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 असम में।
2: थैंक यू मैम। मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: बहुत बढ़िया। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: हाँ
2: जी। थैंक यू। गाना सुना है मैम?
1: जी बता दीजिए।
2: जय विक्रांता मूवी का तेरा मेरा रिश्ता है सबसे आला, यही सॉन्ग सुनना है मैम। आपको और सभी रेडियो रंजन से जुड़े हुए श्रोता दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ।
1: अच्छा, चलिए।
2: हेलो।
1: हाँ
2: जी,
1: आप पहली बार कॉल किए हैं क्या? कि
2: नहीं, पहली बार तो नहीं किया, एक्चुअली अब की तीसरी या चौथी बारी लगा है। सॉरी मैम से बात हुई थी एक बारी, उसके बाद आपसे आज बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: वही तो बोल रहे हैं।
2: जी जी,
1: चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा।
2: थैंक यू मैम।
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
2: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन नए कोरासन में।
0: जी नमस्ते आपको।
1: जी नमस्ते,
0: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक ही है।
0: ठीक ही है या फिर ठीक है?
1: नहीं, थोड़ा सा तो गड़बड़ है, तो ठीक ही है बस।
0: तो वायरल फीवर चल रहा है, वो तो नहीं हुआ ना?
1: सर जी, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे सरद गर्म हो ही जाता है कभी कभी।
0: अच्छा, चलिए सीजनल है, इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है।
1: अब इसमें रहते हैं जब तक, तब तक ठंडा, बाहर जाएंगे तो फिर गर्मी तो हो जाता है।
0: ये ठीक बात है, उसी में अपना सामंजस्य बना के रहना है।
1: कहाँ कल चला पाए थे? कल
0: ठीक है, नील कमल सिंह का
1: सैड सॉन्ग,
0: कोई भी सैड सॉन्ग थोड़ा अच्छा वाला बजाइएगा, नया में का इधर का
1: आप बता देते तो और अच्छा होता है।
0: वो वाला सुना दीजिएगा, बिना तड़ के दिलवा के कभी आराम ना मिले, सही कुछ है सही वाला। डेडिकेशन रहेगा आपको, मनोरमा जी को, आर जे सोनी जी को, और लुधियाना पंजाब वाले भैया जो है प्रमुख भाई, उनको सुनते हैं गाँव का नाम रामा जी भैया के बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब रेडियो द्वारा ही मित्र बने हैं वो भी।
1: अच्छा, मुझे भी याद था, अभी तो फिलहाल नहीं याद आ रहा है।
0: भोला जी पचखेड़ा से।
1: हाँ, भोला जी पचखेड़ा से।
0: हाँ, उनको सुनवाना है, और एक इमरान भाई हैं जो बड़े सुनते हैं आपके शो में, उनको भी।
1: हेलो, हाँ बोलिए, आपका आवाज कट रहा है।
0: हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो बाकी जो लोग का नाम नहीं ध्यान दे रहा है, उन सबको सुनवाना है।
1: जी बिल्कुल।
0: ट्राई कर रहे थे काफी टाइम से, नहीं लग रहा था, पता नहीं इसको क्या हुआ था।
1: नहीं, अभी तो मतलब कॉल चल ही रहा है, सबका आ ही रहा है एक एक करके।
0: ठीक है, प्ले कर दीजिएगा।
1: ओके,
0: थैंक यू।
1: गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
10: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
14: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 में। हेलो, आवाज कट कट के आ रही है।
16: हाँ बोलिए, सुना रहा है।
15: नाम बता दीजिएगा अपना।
16: ज्योति कुमारी।
15: अच्छा जी, और कहाँ से हैं?
16: बलियारी।
15: अच्छा, और कैसी है ज्योति जी?
16: अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
15: हाँ हम भी ठीक हैं। तो और सब बताइए, क्या करती हैं आप?
16: पढ़ते हैं।
15: किस क्लास में हैं अभी?
16: 9th में।
15: अच्छा जी, पढ़ाई अच्छे से चल ही रही होगी।
16: हाँ
15: चलिए, फिर तो अभी बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
16: राखी वाला भैया, राखी बनवाला हमारा कुछ।
15: अच्छा, और गाना सुनाना भी है किसी को? चलिए
16: आपको भी।
15: बिल्कुल, हम भी सुनेंगे, पहले तो हम भी सुनते हैं। ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मौसम ठीक है मैडम?
1: आप बताइए, आप ठीक है?
0: हाँ मैडम ठीक है। आपको जुलूस मुबारक हो मेरी तरफ से।
1: जी आपको भी।
0: आज जुलूस मोहम्मदी है हम लोग की। पैगंबर सादत की याद में मनाए जा रहे हैं, हुजूर की पैदाइश है। जी तो और सब ठीक है मैडम?
1: हाँ और सब ठीक है। आप बताइए, आपको कौन सा गाना सुनना है आज?
0: अच्छा आप भारती मैडम बोल रहे हैं क्या मैडम? जी हम कतरा आवाज कुछ इतना अलग है, क्योंकि सोनी जी की आवाज थोड़ा अलग है। आवाज तो एक ही रह गया, मतलब थोड़ा सा चेंज है आवाज। तो नाश्ता वगैरह हो गया मैडम?
1: हाँ नाश्ता हो गया है हम लोग का।
0: तो आइए घूमने के लिए, सर
1: मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे लोग।
0: तो सब ठीक है ना?
1: सब ठीक
0: है मैडम।
1: बता दीजिए।
0: जुलूस मोहम्मदी के लिए तौर पर एक मरहबा या मुस्तफा, हाँ ये वाला सॉन्ग उसमें आता है ना, डीजे सॉन्ग में।
1: डीजे सॉन्ग में?
0: जी मैडम।
1: अच्छा समझ गए।
0: डीजे सॉन्ग? जी मैडम।
1: जी जी समझ गए। एक बार और मतलब क्लियरली गाना बता दीजिए।
0: मरहबा या मुस्तफा।
1: जी जी
0: डीजे सॉन्ग में, मतलब डीजे में जो बजता है होगा।
1: हाँ
0: हाँ तो वही बजा दीजिएगा।
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ मैडम, जिस उसके लिए आप हैं और जितने सुनने वाले तमाम श्रोताओं को।
1: जी जी बिल्कुल। तो
0: गाना
1: आज नहीं तो कल बच जाएगा।
0: आज नहीं तो कल?
1: हाँ।
0: किसी का कॉल तो बचा हुआ नहीं है ना मैडम? क्या
1: नहीं, पहले का कॉल तो नहीं बचा है, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बस वही सब है।
0: तो आज ही बजेगा?
1: हाँ
0: ठीक है मैडम, 5 बजे के बाद।
1: हाँ हाँ
0: ठीक है मैडम, ठीक है
1: ओके। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM।
0: ठीक है मैडम, पूरा सॉन्ग सुनाएगा मैडम?
1: बिल्कुल
0: ठीक है। थैंक यू मैडम।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
12: Now pick your phone up. Hello. Jab phone kehte bajte hai to kehte hai hello.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
14: जी हाँ, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ।
9: जी
14: कल्याणपुर से मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ।
9: हाँ जी, क्या हाल चाल है लक्ष्मी जी?
14: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
9: मेरा भी ठीक है।
14: मुझे गाना सुनना है।
9: बिल्कुल बता दीजिए, कौन सा गाना?
14: ये जो गाना नहीं है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
9: एक्चुअली भक्ति सॉन्ग तो बजता है पर थोड़ा मूवी का होना चाहिए, एल्बम नहीं।
14: अच्छा मूवी वाला, क्या तो कोई मूवी का अच्छा गाना? तो मैं तो चूज नहीं की, यही चूज की थी।
9: अच्छा जी, क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, एक का सुनाइए तो सारे लोग भिड़ जाएंगे।
14: और ये हनुमान चालीसा बज सकता है?
9: नहीं, सबके लिए सुबह में प्रोग्राम जो चलता है उसमें बजता है।
14: जी जी, ये तो अपने पसंद से कोई अच्छा गाना ये प्ले कर दीजिएगा।
9: ओके जी
14: जी, और मैं ये अपने भाई बहन सबको सुनाना चाहती हूँ, फैमिली में सबको।
9: जी जी बिल्कुल
14: जी। तो मेरा गाना कब बजेगा मैम?
9: आपका गाना आज शाम को नहीं तो कल शाम को बज जाएगा।
14: अच्छा, कितने बजे से शो स्टार्ट होता है?
9: ये वाला 5 से 7 चलता है शाम को।
14: ओके,
9: और इसी को सेम रिपीट किया जाता है अगले दिन 9 से 11।
14: ठीक है,
9: गाना सुनते रहिए रेडियो 91.4।
14: थैंक यू।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: बाल भी सुंदर तू सुंदरी,
1: गाना सुनना है आपको?
0: जी जी
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: अपना पहले सुना दिए, रक्षाबंधन लास्ट दिन है।
1: अच्छा तो रक्षाबंधन का सॉन्ग सुनना है?
0: जी अपना पसंद सुना दिए। अच्छा
1: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: अमन अशीष कौर राहुल अभी गंगा ये को लिए।
1: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी नमस्ते
1: नमस्ते।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
13: Hello. जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो जी, नमस्कार।
15: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: हम हथुआ से बोल रहे हैं
15: जी।
16: हेलो।
15: हाँ बोलिए
16: जी, हथुआ से बोल रहे हैं।
15: हाँ हाँ, कैसे हैं आप?
16: ठीक है, बहुत दिन के बाद लग गया है फोन।
15: अच्छा, आज कितने दिन बाद की है? अच्छा,
16: पहले रेडियो से सुनते थे, आज से 8 साल पहले, मगर 6 महीना से सुन रहे हैं मोबाइल पे, गूगल पे। कहें कि हम भी थोड़ा ट्राई करें, मेरा भी मोबाइल सुना जाए।
15: तो बता दीजिए क्या आपकी फरमाइश।
16: अनोज फिल्म का सुना दीजिए, माँ के लिए, जो माँ वाला नहीं गाता है लड़का।
15: हाँ,
16: माँ के लिए गाना सुना दीजिए।
15: और गाना सुनवाना भी चाहेंगे?
16: ना, माँ के लिए सुना देंगे, अगर रिकॉर्ड करा के अपना आवाज।
15: हाँ जी जी, सभी की माँ के लिए, चलिए डेडिकेट है। ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम, कैसी हैं?
0: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा है अभी? अच्छा, नाश्ता हो गया आपका?
1: हो गया। आपका हो गया?
0: नहीं, लंच होगा दोपहर में।
1: हेलो,
0: हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी, बता दीजिए कौन सा
1: है। 16 साल क्या करेंगे प्यार में।
0: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: आपको है को
0: जी। चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सदाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सदाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: मनलाल बाबू
12: जी, जी क्या हाल चाल है आपका?
11: ठीक है, अपना बताइए।
12: मेरा भी ठीक है।
11: एक गाना है वो संदा कानून का।
12: और गाने की तो
11: मेरी बहन दीवानी है। मेरी सुनवाना है और
12: सुनवाना है तो उनका नाम बता दीजिए।
11: रिया, रूबी, करीना, अनिता, एक और है सीमा है, बहन है, उसकी साथी आप है या सचिन।
12: जी फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
11: कल तो बज जाएगा।
12: हाँ हाँ बिल्कुल, आज और कल दोनों दिन में बजेगा, सुन लीजिएगा जब बज जाए।
11: ओके, नमस्ते
12: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिविजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस बहन जी की खाना।
0: हेलो
1: हाँ
0: बोलिए।
1: बस खाना खा के फ्री हुए हैं और बरसात हो रही है, अच्छी खासी गिर रहा है सुबह से पानी। आपके इधर गिर रहा है क्या?
0: नहीं, हमारे यहाँ तो अभी मौसम मतलब सुहाना बना हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है।
1: अच्छा, मनोरमा जी बोल रहे हैं क्या?
0: नहीं, मैं भारती हूँ।
1: भारती जी बोल रही है। तो मैडम जी, आज पिक्चर रहेगी हमारी मजबूर जी।
0: और गाने की बोल?
1: गाने के बोले, रिमझिम बरसता बाहर ये पानी, अंदर आग लगी है।
0: अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है?
1: जी मैडम, आपको सुनवाना है, सोने मैम को सुनवाना है, मनोरमा मैम को सुनवाना है, और हमारे मित्र हैं गोपाल ओझा जी एक अगवासा से, जीतन धाकड़ जी अगवासा से है, और गजराज सिंह लोधी रेलाई से, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: अच्छा, और ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं।
1: अब बजेगा ये?
0: ये आपको आज नहीं तो कल बज जाएगा।
1: ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़ दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434403।
9: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
12: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
13: भरोसे वाले से लेंगे,
12: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
13: और कीमत भी।
12: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
14: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
15: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
8: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
16: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
8: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
17: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
8: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: Now pick your phone up.
19: Hello?
18: Pick it up, pick it up.
19: Hello?
18: Now pick your phone up.
20: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
21: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। रेशमा पठानपट्टी से
22: बात है। आप ठीक
21: सर्दी जुकाम नियर हो गए तेज व्यास ठीक बानी।
22: हम तो आ रहे
21: कोनो बात नहीं
22: है।
21: मौसम चेंज होता है ना, उससे सब लोग की तबीयत खराब होता है। कभी ठंडा लगता है, कभी
22: नॉर्मल ठीक बानी। बारिश हो जाता तो ठंडा मौसम आता, फिर धूप लगता, गर्मी लगा
21: लगा। सब जानी ठीक बानी।
22: हाँ, हमने सब ठीक बानी था। हमारे भी आज रबर होला ठीक बानी।
21: बता दी कौन गाना सुने?
22: आज गाना के सामने जाता है
21: और गाना सुनाना भी
22: है। बढ़ने वाली पहले ना मसीने
21: हम तो बढ़ने ही वाले, हम कहा जाते हैं हम तो बिना सुनने जानी
22: ना।
21: चलो कई बार तो
22: फिर
21: गाना प्ले करी।
22: ठीक है मैडम,
21: सुनते हैं रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ बोलिए मैम।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
0: हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मैं रोशनी बोल रही हूँ
1: जी। और कहाँ से रोशनी जी?
0: पठान से।
1: अच्छा जी, कैसी हैं रोशनी जी?
0: मैं ठीक हूँ, आप लोग बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं।
0: क्या हो रहा है?
1: बस आप सबसे बातें हो रही हैं।
0: क्या
1: कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: खेसारी लाल का गाना बता दीजिएगा।
1: और गाने की बोल बता दीजिए।
0: वो बता दीजिएगा जो आया नहीं है, न्यू वाला बता रहे। हाँ, इतिहास के पन्ना में लिखल हमें हलाल से केहू न जीतल बा। वही मतलब।
1: और गाना सुनाना भी है।
0: हाँ, मेरी सासी को, मेरी अम्मी को और मेरी बहन को।
1: अच्छा जी, तो गाने करते हैं।
0: हाँ,
1: रेडियो रूम से।
2: एक बात बताइए।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone ding de bajti hai to kehte hain hello.
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: सलाम अलैकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझिम 90.4 एफएम में।
14: मैं उद्दीन जुमरिया से बोला था। नहीं,
13: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
14: हाँ सर,
13: अभी जाता वैसा।
14: हाँ सुना था।
13: अच्छा ठीक बानी। हाँ हाँ रवा ठीक बानी नो।
14: हाँ ठीक बानी सर, रवा फिर बात बात ठीक हो बानी।
13: अच्छा ऐसी ठीक रही, हमेशा फोन करत रहे, हमनियों के हाल चाल पता चलत रहो।
14: ठीक हो अलबा, बड़ी देर से मेहनत करता नहीं, 5 मिनट पहले से फोन लगाता नहीं, लगते नहीं।
13: अच्छा तो कॉल आई रहा न इतना।
14: अपन सुनाई कैसे बने?
13: हमनियो के ठीक बानी।
14: चले ठीक है, काम बा मालिक से दुआ करता
13: नहीं। ना तो जल्दी ठीक हो जाए।
14: हाँ ठीक हो बनी सर, बा पैसा लागल भाई ठीक हो गए।
13: तो का कर जाए, पैसा जाए तो देह ना ठीक हो।
14: मान लीजिए बेटा नौकरी छोड़ के हमारे खाते बैठ गए, औरत है नहीं, औरत के मुँह 19 साल हो गए।
13: अच्छा
14: अब सेवा सहल जितना भी बा बेटे के जिम्मे बा।
13: अच्छा चली रहा, बेटा उतना करता नहीं रहा के और का जाए।
14: और ये तो बा बहुत ज्यादा सेवा कैले। ठीक बा, वो तो दुनिया हो के सुख के दुख कटेला।
13: हाँ तो बता दी रुआ कौन गाना सुने आज?
14: हमारा के गाना को सुना दे, या तो पूरा नहीं कम बा।
13: अच्छा बता दी, हम खोज
14: हमने सोनम को खत लिखा, खत में लिखा यही गाना हमको सुना दे।
13: अच्छा ठीक है, सुना देंगे। और गाना सुन,
14: गाना हमारे यासुद्दीन भाई बारे उनका के रुआ के और पूरा रेंजिंग टीम जहाँ तक तो ससुरल बा वहाँ तक तो सबका के।
13: चलिए ठीक बा, अपन ख्याल रखें।
14: हाँ ख्याल में बानी, एक जगह घूमे के नहीं के बिस्तर पर बानी,
13: पहले बड़े नोई गनिया करे।
14: हाँ बिस्तर पर बानी, बातों जाए को होला तो गोदी उठा कर ले जाले, अब तो कर चल जाता नहीं अपना पैसा। अब चल जाता नहीं। ठीक बा सर,
13: ठीक बा फिर गाना प्ले करता नहीं, सुनाते रहेंगे रेडियो रंजीम 90.4।
14: हाँ हाँ, सलाम अलैकुम।
13: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम नमस्ते, हमको सॉन्ग सुनना।
0: बिल्कुल नमस्ते, कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: भोजपुरी सॉन्ग सुना सकते हैं?
0: कौन सा?
1: भोजपुरी।
0: जी बिल्कुल भोजपुरी सुना सकते हैं, पर अच्छा फरमाइश कीजिएगा।
1: भाई बहन का गाना।
0: कौन सा?
1: अंकुश राजा का।
0: गाने की बोल बता दीजिए।
1: गाने की बोल रक्षाबंधन वाला सॉन्ग।
0: रक्षाबंधन में तो अंकुश राजा का बहुत सारा सॉन्ग है, आपको कौन सा सुनना है?
1: हमको नाम नहीं निकला है, अंकुश राजा का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए भाई बहन वाला।
0: जी नेम है तो मतलब निकला ही है बहुत सारा,
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: अच्छा, और गाना सुनाना भी है
1: आपको? रेडियो दोस्तों को सबको।
0: अच्छा चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजिम 90.4 FM।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग।

0: से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: हेलो, बोलिए।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिजन 90.4 एफएम में।
2: थैंक यू मैडम जी, गाना सुनना है जी हमको।
1: बिल्कुल सुनाऊंगी, नाम बता दीजिएगा अपना।
2: बाबू के अंगना से उड़ी जाओ होशी रे की अंगना भइले परदेश।
1: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना है?
2: गाना तो बस अपने रेडियो रिजन का पूरा परिवार को सुनाना है, पूरा टीम जो है और जितने भी आदमी सुनते हैं यहाँ से लेकर बाहर तक सबको सुनाना है।
1: तो अपना नाम भी बता दीजिए ताकि लोग गाना सुना रहा है।
2: तो मेरा नाम तो बहुत दिन से फोन करते अरुण मिश्रा है।
1: मतलब मुझे तो मालूम है लेकिन
2: अरुण मिश्रा गोपालगंज से। कल तो गाना मैं नहीं सुन पाया, ये जो बाबुल प्यारे रुए वो गाना तो हुआ लेकिन मैं नहीं सुन पाया, मैं था पूजा में।
1: अच्छा,
2: सुबह के गवाए थे और शाम को हुआ 5 बजे लेकिन मेरे को नहीं मिला बोलने के लिए।
1: इस समय सुन लेना चाहिए था, 9 से 11
2: बजे। जी जी जी, दूसरा बार कॉल करेंगे तो फरमाइश देंगे।
1: कोई बात नहीं
2: जी। ओके, ठीक है।
1: और तो ठीक है ना?
2: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मौसम तो अच्छा है। पूजा पाठ चल रहा है
1: जी।
2: आप लोग ठीक है ना?
1: हाँ हाँ, हम सब भी ठीक है।
2: चलिए ठीक है।
1: ओके, फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
2: ओके।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में। नाम बता दीजिएगा अपना।
0: आलिया खातून।
1: और आलिया जी कहाँ से हैं आप?
0: गोपाल गो सारे दो से हम रहते हैं।
1: अच्छा जी, तो अभी आप पढ़ती हैं?
0: हाँ।
1: कौन सी क्लास में हैं?
0: यूकेजी।
1: अच्छा जी, पढ़ने में मन लग रहा है?
0: हाँ।
1: चलिए बढ़िया है। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: कव्वाली।
1: गाने की बोल बताएंगे कुछ?
0: माँ बाप का दिल न दुखा।
1: अच्छा जी, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: हाँ,
1: बता दीजिए
0: सबको।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 91.4 FM। ओके
0: ओके।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065750।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

0: साथ थे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
1: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857288291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857288291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलेंगे। और यहाँ हमारे पास जो कि आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग है और मैं गाना प्ले करूँगी आप सभी के लिए, रक्षाबंधन का सॉन्ग है और मूवी भी रक्षाबंधन ही है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

अभी रक्षाबंधन का एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले किए थे आप सभी के लिए, और गाना रक्षाबंधन मूवी से ही था, उसका टाइटल सॉन्ग था। और यहाँ पे हमारे इस पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं, जो कि लिख रहे हैं कि जौहर भारती दी और करण मुरगुर हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम, मुकेश यादव अहमदाबाद से, और कैसी हो आप? और हमें भी सॉन्ग सुनना है और सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्कार, और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी, तो दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, शमशाद अली, ग्राम खैर खता, जिला मुरादाबाद, और मेरा भी फरमाइश है, और गाने की बोल पहुंची हुई है।

तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैडम नमस्ते और रवि कुमार तिवारी, हम भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैडम जी, मैं मोहम्मद अंसारी जयपुर राजस्थान से और मुझे गाना सुनना है। और मैम गाने की फरमाइश है, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी के गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और यहाँ मोहम्मद अंसारी जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं भारती जी को दिल से सलाम अलैकुम गाना चलाने के लिए, तो एंजॉय कीजिए गाने को।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765065750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। यदि आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैम, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और बहुत दिनों के बाद मैं आज रेडियो से जुड़ रहे हैं, और राजकृत साहनी वीआईपी पंचायत अध्यक्ष नया टोला सलादपुर जिला गोपालगंज बिहार, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी तबीयत कैसा है, और मेरी भी हाजिरी लगा देना और मैं भी जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरी तबीयत अभी फ़िलहाल ठीक है। और लिख रहे हैं भारती जी मेरा वीक घोटाला कर दिए, बताइए कब मेरा वीक आएगा। तो नहीं, आपका वीक का घोटाला नहीं हुआ है, आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं और प्ले हो जाएगा। और लिख रहे हैं कि दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, अच्छे थे हम मगर बुरा नसीब था, लाख कोशिश करके भी कुछ ना कर सके, हम घर भी जल हम घर भी जलाता जलता रहा और समंदर भी करीब था। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं, साजिद अंसारी मीरगंज से, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और उससे पहले कि यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं मुकेश यादव अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं चाय की टपरी पे, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश, और लिख रहे हैं कि डेडिकेट है आपको और घाटा भाई, उत्तम भाई, देवेंद्र भाई, बिरजू भाई, भास्कर भाई, रेडियो रिमझिम सुनने वाले पूरे लिसनर को, थैंक यू मुकेश यादव। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मुकेश जी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना मुकेश यादव जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैम गाना प्ले करने के लिए, और का गाना काफ़ी ही लाजवाब था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं हाय भारती मैम, मेरा नाम शिव कुमार है और मैं सिरनी बाजार दिल्ली से जुड़ा हूँ, और मेरा भी एक गाना बजा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं प्लीज़ मैडम हमारा गाना बजाने की कोशिश कीजिए, नमस्कार सलाम अलैकुम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, साध मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनाव से और आपके कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और वॉइस भेज रहा हूँ बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम हंस राज राजस्थान जिला हनुमानगढ़ और कैसे हुआ, तो बहुत बहुत स्वागत है और मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं न्यायपारा विरही से बसंत कुमार ठाकुर सरोज ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है गुड मॉर्निंग मेरा नाम विद्या निवास मऊ जिला से और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ मैसेज पहुंचा हुआ है जो क्लिक रहा है कि मैडम जी मेरा गाना बजा दो कल से पेंडिंग में है और आपने बोला कल सुनाऊंगी, तो जी बिल्कुल आज आपकी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मुझे सॉन्ग सुनना है और गाने की बोल है चुपके से कोई आएगा, और काफ़ी दिनों के बाद फरमाइश भेजी हूँ प्ले कर दीजिएगा मैम। और साजिरा अंसारी मीरगंज से जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रमजिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाली मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:34 हो रहा है और शो है योर वॉइस और योर चॉइस का। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है साजिदा अंसारी मीरगंज से, जो कि लिख रहे थैंक यू सो मच मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और मेरा नाम अजय है और मैं अयोध्या से हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा है लिख रहा है तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे प्यार में जी तो क्या मर भी सकता हूँ, फिर भी तू नहीं मिली तो मुझे कोई गम नहीं, ये तरीका किसी दूसरे पर भी सेट कर सकता हूँ। और मुकेश भाई सिग्नल मिल गया है क्या दिलीप राम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी दिलीप जी। और यहाँ पे कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम दिलीप कुमार है।
0: और कहाँ से हैं?
1: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मुझे गाना सुनना है मूवी है घर द्वार।
0: घर घर द्वार
1: मेरी बहन। हाँ जी जी जी, हाँ है राखी का गाना है। मेरी बहन है राखी के साथ जी जी वाई।
0: कौन सा गाना?
1: मेरी बहन है राखी का लास्ट का गाना निभाएगा।
0: और गाना सुनाना भी है
1: ये आप सबको और जिन्हें सुनने वाले हैं ये बहन जिन्हें सुन रहे हैं सबको।
0: और तो चलिए गाना आपका प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: Thank you.

0: अभी हम लोगों ने राखी का बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुना और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैम, मैं मोहित शर्मा करड़िया से जुड़ चुका हूँ और मुझे भी ये गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कहाँ हो मैडम जी, हमारा मैसेज शामिल ना हुई। और लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम आपको और मैं भी सभी दोस्तों को, जितेंद्र सिवान जिला से, क्या आज हम फरमाइश कर सकते हैं, बताइए। 7 दिन पूरे हो गए हैं तो जी बिल्कुल आप अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखते हैं, नमस्ते भारती जी, राजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और जुड़ चुके हैं, तो हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम, समीर आलम जंगलिया से और सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी, मेरा एक गाना सुनना है।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम मनोज शर्मा हुआ, करड़िया से।
0: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज हमारे बच्चे का जन्म है, दीपांशु कुमार शर्मा का
0: जी,
1: बर्थडे है।
0: जी जी,
1: तो एक बर्थडे का गाना सुना दीजिए कोई, या ये गाना सुना दीजिए, बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आंख के तारे।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो आपके बच्चे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे रेडियो रंजन परिवार की तरफ से।
1: जी जी जी जी, तो ये गाना बजा दीजिए, बच्चे मन के सच्चे।
0: तो चलिए गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: चलने की

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211-87952। नियम और शर्तें लागू।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
5: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और बढ़ेंगे बिना देरी किए आगे। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग भारती जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती मैडम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैम ये बातें खाली करने के लिए होती हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और लेकिन बच्चे जो अपने मर्जी से काम करते हैं उसके बाद पिटाई निश्चिंत होती है, क्योंकि हमने भी अपने मन की बचपन में खूब किया था और खूब मिला था। बात तो सही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हमारा भी, हमें भी याद रखिएगा। तो जी बिल्कुल, आप भी याद है और नहीं भूले हैं आप सभी को। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मेरी भी गाने की फरमाइश है, और जितेंद्र सिवान से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है शमशाद अली जी की तरफ से, ग्राम खरैया खादा जिला मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: कोई बात नहीं है, सभी के गाने प्ले किए जाते हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज बजा दीजिए, रिकॉर्डिंग भेज दिया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं जौहर, और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास बिहार से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैं परसों के गाने का लिंक भेजा हूं और बजा नहीं था क्योंकि उस दिन शो नहीं चला था मंगलवार को, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि सैड सॉन्ग सुनना है, और समीर आलम मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहा है, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे जी, मुझे एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, और गाने की बोल है, और बहुत ही खूबसूरत गाने की बोल पहुँची हुई है। उससे पहले हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश जो कि पहुँची हुई है, लिख रहा है कि हाय भारती जी, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी गाने की फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासरीगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ, आपके कार्यक्रम से जुड़ चुका हूँ, और गाना बजा दीजिएगा, मूवी का नाम है प्यार का देवता, गाने का बोल है, बहने ऐसी होती हैं, भाई हंसती है तो हंसते हैं, बहने ऐसी होती हैं। और ये गाना है रक्षाबंधन पर, और सबसे पहले सुनवाना चाहता हूँ आपको और आपके सारी टीमों को और जितने भी रेडियो रेंजिंग सुनने वाले हैं, सभी श्रोताओं को हमारे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।

तो अभी हम लोगों ने रक्षाबंधन का एक प्यारा सा सॉन्ग सुना और मूवी था प्यार का देवता और गाने की बोल थी बहने हंसती है तो, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश थी जो कि मैसेज करने वाले थे इरशाद मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनाव से। और यहाँ पे जो कि अब हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मुजफ्फरपुर से मुमताज बेगम, मैं मुजफ्फरपुर से मुमताज बेगम जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मोतिहारी से एमडी बिंदु और एमडी मीनू जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय डियर भारती जी, प्यार भरा नमस्कार, क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी यूएई दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनके तरफ से कुछ लाइंस पहुंची हुई हैं जो कि लिख रहे हैं मत झुकाओ नज़रों को, नज़र को नज़र से मिलाने दो, दिल में बसे यादगार को प्यार के फूल की तरह खिलने दो। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि जायका अलग है हमारे लफ्जों का, रेडियो पर कोई समझ नहीं पाता तो कोई भुला नहीं पाता, मौसम इश्क है तू मेरी कहानी बनकर आना, मेरी रूह को भिगो दे ऐसी बारिश बनकर आना। भारती जी मेरा भी वेलकम कर लीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, वेलकम हो चुका है। और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है हेलो मैम राधे राधे पाजी यूपी 54 से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो राधे राधे आपको भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है राघव जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं यादों के भंवर में एक पल हमारा हो, खिलते चमन में एक गुल हमारा हो, जब याद करें आप अपने दोस्तों को उन नामों में बस एक नाम हमारा हो। और बहुत ही खूबसूरत से लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास धनेश जी की तरफ से फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल पहुँची हुई है जो कि लिंक के माध्यम से है। और गाने की बोले शराबी तो सारा जमाना भिलवा, और भोजपुरी सॉन्ग है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजन 90.4 FM में।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034648652 पे।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, खेत के हुरी के बोवत के हुरी बा, बोझा बीमारी के लेके ढोवत के हुरी बा, रिंगटून ऐसन आ गइल बा कि बाजत बा केहू केहू के लेकिन टोवत केहू औरी बा। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैडम जी, मेरी फरमाइश कब पूरी होगी, और आज 2 सप्ताह होने जा रहा है और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा फिल्म की, नाम और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और बसंत कुमार ठाकुर पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मैंने आपकी गाने की फरमाइश मंडे को ही पूरी की थी, इसीलिए मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर रही हूं। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और प्लीज़ सुना दीजिएगा। और यहाँ पे पाँच जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है और बहुत ही प्यारी सी लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, सूरज हूँ डूब कर फिर से निकल जाऊँगा, सूरज हूँ डूब कर फिर से निकल जाऊँगा, वक्त की इस धूल से मैं कभी ना घबराऊँगा, माना कि आज अंधेरे ने घेर रखा है मुझे, पर अपने ही चमक से मैं फिर नया सवेरा लाऊँगा। और काफ़ी प्यारी लाइन है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि हमारी आरजे सोनी जी जुड़ी हुई हमसे और लिख रही हैं, मैं भी गाना सुनना चाहती हूँ। और यहाँ पे इनकी तरफ से वॉइस नोट पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, और मैं हूँ आप सबकी अपनी आरजे आरजे सोनी, और आप सभी के बीच मैं भी जुड़ चुकी हूँ अपने पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के साथ। और कल है रक्षाबंधन का पावन त्यौहार, तो इस खूबसूरत मौके पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये राखी आपके रिश्ते में प्यार, विश्वास और अपनापन हमेशा बनाए रखे, और हर बहन का स्नेह, हर भाई का साथ यूं ही सलामत रहे। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए गाना फरमाइश करना चाहूंगी, और गाना है धागों से बांधा रिश्ता ये दिल का, यही वाला गाना प्ले कर दीजिएगा भारती जी। उम्मीद है कि आप मेरे गाने की फरमाइश जो है जरूर पूरा करेंगी, और इसी के साथ फिर मिलेंगे आप सभी से, एंजॉय करिए इस खूबसूरत से गाने को।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे रक्षाबंधन मूवी से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज़ में धागों से बांधा, और गाने की फरमाइश करने वाली खुद हमारी आरजे सोनी जी थी, और उनकी तरफ से थैंक यू का मैसेज पहुंच चुका है और लिख रही हैं कि यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, लिख रहा है मेरी प्रिया आरजे सोनी जी हम लोगों के बीच शो में जुड़ी इसके लिए दिल से धन्यवाद, ऐसा ही जुड़ते रहे और ऐसे ही जुड़ती रहे प्रतिदिन, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्कार मैम क्या हाल है, और हम ओम साई टेलर बोल रहे हैं और बंजारी रोड पुलिस लाइन के सामने गोपालगंज से राघव जी, और आज जो लिंक भेजे हैं और सॉन्ग चला दीजिएगा, सुनना चाहता हूँ और सभी रेडियो दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। और लाइन पहुंची हुई है छोटी सी और लिख रहे हैं उम्र छोटी है तो क्या जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, उम्र छोटी है तो क्या जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटे देखी है और बगल में खंजर देखा है। और काफी डीप लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून, और बोलिएगा हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से भारती जी वॉइस भेज दिया हूँ और गाने का लिंक भेज दिया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि आपने गाने की लिंक भेजी है फेसबुक के माध्यम से भेजी है तो मैं इसे प्ले नहीं कर सकती, आप गाने की लाइन ही बता दे मैं उसे प्ले कर दूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय भारती दी का हालबा, और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से जुड़ी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी करिश्मा जी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजम 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। तो कौन से गाने की फरमाइश है बता दीजिए।
1: गाना है बंधन दिलों का बंधन,
0: और गाना सुनाना भी है
1: आपको।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिथम 90.4 FM में।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-75।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बढ़ेंगे आगे, और यह हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं भी आ गया हूं, आपको नमस्ते, और मैं भी शो से जुड़ गया हूं, सोने जी का सॉन्ग बज रहा था और उनको भी नमस्ते। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, जब तक धोखा नहीं देगी तुम्हें कोई नारी, जब तक धोखा नहीं देगी तुम्हें कोई नारी, तब तक नहीं बन पाओगे IAS अधिकारी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैम, पप्पू ठाकुर बगही बाजार कटिया गोपालगंज से जुड़े हैं और लिख रहे हैं हमको भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, RJ सोनी मैम जी को दिल से प्रणाम करते हैं, और हम राजू सोनी हरपुर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और भारती मैम नमस्ते, प्रणाम राजू सोनी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाने की बोल भेजे हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोहम्मद इरफान जी लिख रहे हैं, मैं तो हमेशा मस्त बिंदास झकास रहता हूँ भारती जी, अभी ड्यूटी में रहते हुए सोचा रेडियो में हाजिरी लगा दिया जाए। और लिख रहे हैं, मेरी तरफ से निशा भारती उज्वलिया, RJ सोनी बहन, रुखसार खातून, हजरा खातून, शगुफ्ता फिरदौस, सुधा भारती और अनिल भाई को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम और नमस्कार बोलिएगा याद से। और लिख रहे हैं कि न जाने कौन सा विटामिन है इस मोबाइल में भारती जी, एक दिन इस्तेमाल ना करें तो सारा दिन कमजोरी कमजोरी सा महसूस होता है। और लिख रहे बहुत ही सुंदर गाने की प्रस्तुति सोनी बहन, ऑनलाइन राखी भेज दीजिएगा। और लिख रहे हैं हम भी ऑनलाइन मिठाई और पैसा भेज देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती मैम जी, अमरजीत कुमार गुजरात से, और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुँची हुई है कदे आवे कदे जावे, और प्लीज़ मैडम जी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी आपका भी। और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमजिम 91.4 FM में।

और यहाँ अमरजीत की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैडम जी गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सोनी मैम जी सादर नमस्कार जमशेदपुर से प्राची ठाकुर मुझे भी गाना सुनना है और भोजपुरी सॉन्ग तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और गाने की फरमाइश कर दे आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी गाना तो मेरा बज गया पर गाना हम सुने लेकिन हमारे पास कस्टमर आ गए थे इसलिए हम मैसेज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं मैसेज नहीं कर पाए इसके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी सॉन्ग सुनना है चल। और गाने की फरमाइश पहुँच गई और राजू सोनी हरपुर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है राघव जी की तरफ से और लाइन पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं जिन फूलों को सवारा था हमने अपनी मोहब्बत से हुए खुशबू के काबिल तो बस गैरों के लिए महके। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैडम जी नमस्कार सचिन सिंह जीतू सिंह अभय राज राजकुमार भेरिक हेल्पर सचिन मास्टर धर्मेंद्र कुमार मनोज बैटरी मेघनाथ विवेक ओम प्रकाश बिमलेटर और हम लोग सुल्तानपुर संगम नगर कोल्हापुर महाराज से सुन रहे हैं और रेडियो रमझिम से जुड़े हुए हैं और आज हमारा गाना बजा दीजिएगा तो जी अपने गाने की फरमाइश कर दे बिल्कुल गाने की फरमाइश को पूरी की जाएगी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहा है कि राजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की फरमाइश जो कि पहुँची हुई है और गाने की बोल है लिख रहे हैं कि वो हो तुम गाने की बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं कि आंखें आज भी उस हरामखोर को ढूंढ रही है जिसने बचपन में यह अफवाह फैलाई थी कि मोर का पंख किताब में रखने से विद्या आती है। ऐसा लग रहा है सन्यासी रंजन जी ने इस बात को सीरियसली ले लिया था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं विशाल पांडे जुड़े हुए हैं, और गुड आफ्टरनून मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे जी, मुझे भी एक गाना सुना दीजिएगा और गाने की बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अनामिका चौधरी बद्रा राजा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखा है कि मुझे भी गाना सुनना है, और मेरे भी गाने की फरमाइश प्ले कर दीजिएगा। और इनकी तरफ से वॉइस नोट पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: मैम जी नमस्कार, आपका नाम है जितेंद्र सिंह जिला से, आपके प्रोग्राम में हमको एक गाना सुनना है जिसका लिंक भेज दिया हूँ। ये गाना सबसे पहले आपको दिलीप भाई हैं रेडियो रिमझिम सुनने वाले सब नए पुराने दोस्तों के साथ हमारा भी फरमाइश चलवा दीजिएगा। धन्यवाद।

0: हम ना गायक हैं।
1: आहो राम जी।
2: अरे कॉफी आ गई बा काम आज।
1: चुप रहा
3: भाग मत बा, झूठों के माथा मले बड़ा दिमाग।
1: भाग मत है चुप।
2: तका लौंडा पचीसी कोई ले बड़ा गावो ना।
1: आए राम जी।
2: ये राम सीता जी खाली होई।
1: आर नून रोटी कैसे जुटाई। आ करजे में उड़ जाता कमाई।
3: जिया लोटा पाहुं जिया।
1: महंगा

0: अभी हम लोग ने सुना महंगाई पे सॉन्ग, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास फीडबैक मैसेज पहुंच गया है, तो प्ले करते हैं और सुनते हैं।
1: मैम जी नमस्कार, हमारा फरमाइश चला एकदम सुन के एकदम मन गदगद हो गया, एकदम चलाते रहिए, आज धूम धड़ाका मचाते रहिए। ओहो
0: साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि

और नमस्ते भारती, मैं कल, मैम मेरा कल गाना नहीं बजा था और आज मेरा गाना बजा दीजिए, रक्षाबंधन का गाना है। तो मैसेज करने वाले हैं गोविंद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैडम जी यह गाना दिनेश कुमार मिश्रा जी के लिए है और सुनाना चाहता हूँ। और लिख रहे हैं आप, मेरा गाना 3 बजे के बाद बजाइएगा क्योंकि अभी मैं सुन नहीं पाऊँगा। तो जी बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके गाने को 3 बजे के बाद ही पूरा करूँगी। और यहाँ पे धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, महंगाई के ऊपर जितेंद्र जी सिवान वाले का गाना बजाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, लिख रहे हैं तनी जल्दी गाना बजा दीजिए, लेट हो जाई तो भेंट ना हुई।

0: अरे ए बेटी, पहले पानी वानी पी अब।
1: ना माई, पहले राखी बनाई।
2: हाँ माई, पहले राखी बनाई।
0: तोहन लोग के अभी लड़कपन गयल ना, अब खुशी ससुरैती भइली।
3: का माई, बना दे लूनू गैर।
1: अरे

0: अरे बेटी तू तो भावुक हो गई।
1: और यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं धन्यवाद गाना बजाने खातिर, तो एंजॉय कीजिए गाने।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन

0: हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और बिना देरी के बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैं भी जुड़ गया हूँ घुमरिया बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, और राम विलास मुझे भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश मेहताब है और मैं इजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से बोल रहा हूँ। और मैम, लिख रहे हैं कि मैम जो हमने मैसेज किया था फरमाइश तो बजी नहीं थी, और मुझे यह जानना था कि यहाँ पे अरुण जी की तरफ से बार बार व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना होता है, आपको कॉल करना है तो कॉल के लिए अलग से नंबर है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल ना करें। और यहाँ पे लिख रहे हैं अखिलेश जी कि कब कब होता है फरमाइश और कितना बार मैसेज करना होता है, और मुझे इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो प्लीज़ मैम बता दीजिएगा और गाना बज सके तो बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी, और आप मैसेज तो रोज़ कर सकते हैं और रोज़ सभी के गाने सुन सकते हैं, और अपने गाने की फरमाइश आप उसी दिन सुन सकते हैं जिस दिन आपका दिन हो या सोमवार हो, तो आप अगले सोमवार को ही फरमाइश करेंगे। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि पप्पू ठाकुर बगही बाजार से कटिया गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की बोल पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं कि एक लाइन पहुंची हुई, लिख रहे हैं दौलत की आधी दौलत की आधी दौर में गांव सुनसान पड़े हैं, नाच नाच कर भगवान बताएं मंदिर में वो मंदिर सुने पड़े हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और गाना सुनना चाहते हैं शिल्पी राज की आवाज़ में गुदनवा सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ। फिर हमसे मुलाकात होगी आपकी दोपहर न्यूज के बाद, तो गाना एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
4: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयंसेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +977-985-131-6807 और +977-970-910-7500। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की एक टीम तैनात की गई है।
6: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH-27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH-27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
13: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710392 या 9765

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैम, और मैं हजरा सूरज से, और मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं कि मजबूरी के साथ कभी मुझे प्यार मत करना, एहसान करके मुझे कभी खुशियाँ दान मत करना, दिल करे तो सच्चा प्यार करना वरना झूठी अफवाहों से मुझे बदनाम ना करना। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं हजरा जी, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, आप सब रेडियो रिमझिम परिवार को सादर प्रणाम, पवन शाह ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार, पवन सिंह का गाना सुनना है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इससे पहले यहाँ पे जो कि

और यहाँ जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है करिश्मा जी की तरफ से, और करिश्मा जी गाना सुनना चाहती हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की बोल है भाई कोहिनूर बाड़े। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर।
1: तो अभी हम लोग सुन रहे थे करिश्मा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी भाई कोहिनूर बाड़े हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम मेरा गाना कब बजेगा। और मैसेज करने वाले हैं गोविंद जी और लिख रहे हैं कि गोविंद कुमार जलंधर पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है इनकी तरफ से और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल है तेरा दीवाना, गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या करें?

0: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
2: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है गोविंद जी की, थैंक यू गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहा है, गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैं सिद्धार्थ कुमार बरौली गोपालगंज से, मैडम जी मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैम हमारा गाना बजा दीजिएगा प्लीज़, सॉन्ग नेम भेज रहा हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। रोहित कुमार हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, एक बार फिर से मैं जुड़ गया, और लिख रहे हैं कि चार फीट से लेकर छह फीट तक की महिलाएं एक ही नाप की साड़ी पहनती हैं, और तुम कहते हो कि उन्हें एडजस्ट करना नहीं आता। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि प्रमुख जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं, नमस्कार जी हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है राघव जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि पति ये पलंग क्यों ले आए, पति धनतेरस है ना इसलिए, पत्नी धनतेरस पे पलंग, पति हाँ धनतेरस पे सोने का कुछ खरीदते हैं ना इसीलिए। और इसी के साथ है, चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे, और गाने की बोल है, मैं जिसकी खातिर जा रहा हूँ, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

अभी हम लोगों ने सुना राघव जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और यहाँ पे उनकी तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मोहब्बत तो दिल में की थी, मोहब्बत तो दिल से की थी, दिमाग उसने लगा लिया, दिल तोड़ दिया मेरा उसने और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए, दिल से थैंक यू आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तो दोनों में से गलती किसका है। यहाँ पे रवि जी फिर से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं गाना बजा सकते हैं, तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और उससे पहले जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि गाना सुनना है और गाने की बोल है आज धरती पर, इसे ऐसे उगल बाड़ू तू चांद जैसन उगल। और अजय कुमार, अजय जी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714 86164।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिखता है कि अजय जी से पूछिए मैडम जी कि अयोध्या में कहाँ से हैं वो, तो बता दीजिए अजय जी आप अयोध्या में कहाँ से हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख

रवि कुमार जी लिख रहे हैं कि रवि जी और लिख रहे हैं कि भारती मैडम जी यह गाना दिनेश कुमार मिश्रा जी को सुनाना है और गाने की यहाँ पे जो कि बोल पहुँची हुई और लिख रहे हैं गाने की बोल है प्यार ओकरे से होला। तो चलिए मनीष जी बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रंजीम 90.4 FM में।

प्यार का भी गजब रीत है। प्यार अक्सर उसी से होता है जो चाहता नहीं है। कुदरत का खेल देखिए, वो अक्सर वही देता है जो भाता नहीं है।

अभी हम लोग सुन रहे थे मनीष जी की तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है पाजी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती मैम मेरा नंबर कब आएगा? तो जी बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा। और इससे पहले यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे जी, और मुझे भी एक गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। और अनामिका चौधरी बत्रा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं, भारती जी मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं किशोर सब लिनिया, जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भाई मेरे भैया से कहना बहना याद करे, गुड सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, कुछ बढ़िया जगह पे जाइए जहां नेटवर्क हो। वालेकुम अस्सलाम, हेलो केशमा जी।
6: जी मैम।
5: मेरा आवाज कट कट किया हुआ था, वैसे सुनाई नहीं खेले।
6: अच्छा जी, गाल
5: अच्छा
6: आवाज सुना रहा मैडम जी।
5: हाँ अब सही आवाज़ है, बोली। कौन सा गाना सुने एक बार। हेलो
6: हेलो मैम, सलाम अलैकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम।
6: रक्षाबंधन का गाना सुना दीजिएगा हमको।
5: रक्षाबंधन का
6: ना, ये रेशम का तार भैया।
5: अच्छा, और गाना
6: सुने।
5: हाँ हाँ, तो गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही लो रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। ओके, और इस गाने को हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कुछ लोगों ने फरमाइश किया है, तो आप सभी के लिए ये गाना है, सुन लीजिए।

0: राजू
1: इसे अस्पताल ले चलते हैं।
0: नहीं शांति नहीं। हाँ यार बहन अपने इस भाई को आगे नहीं बांधूंगी।

0: भैया।
1: तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग राखी का, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज से मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद सदाम और साथ में मोहम्मद निसार और रिजवान और अभिनंदन टेलर भाई भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे रवि जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों आदमी सुन रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार, मैं भी जुड़ चुका हूँ आपकी शो से और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, मैं संगीता जैसल और मैं माँ पूजावंती हॉस्पिटल बस्त्रा राजा लालगंज मिर्जापुर से गाना सुनना चाहती हूँ और राखी का बंधन निभाना सुनना दीजिएगा। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं न जाहिर हुई तुमसे न बया हुई हमसे, बस सुलझी हुई आंखों में उलझी रही मोहब्बत भारती जी, बहुत सुपर सॉन्ग समझो ना रेशम के तार भैया दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है,

संतोष जैसल जी की तरफ से और गाना सुनना चाहते हैं, और राखी का सॉन्ग है और गाने की बोल है राखी का बंधन को निभाना सुना दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-097-06-575।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है डॉक्टर संतोष जैसल जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और संगीता जैसल जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तुम्हें पानी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे प्यार में जी तो क्या मर भी सकता हूँ, फिर भी तू नहीं मिली तो मुझे कोई गम नहीं, ये तरीका किसी दूसरे पर भी सेट कर सकता हूँ। और लिख रहे हैं कि चुरा कर मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, और बहाना यह है कि मेहंदी लगाए बैठे हैं, और वो करीब बहुत है मगर कुछ दूरियों के साथ, और हम दोनों जी तो रहे हैं पर बहुत ही मजबूरियों के साथ। और दिलीप जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि भारती जी और मेरी वाइफ का नाम भी आप ही के नाम पे है, और बहुत ही खूबसूरत है आपकी वाइफ। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जौहर भारती दी मुझे गाना सुनना है, और करण मुर्मू हैदराबाद से, और कल मेरा गाना नहीं बजा था, आज प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपके इनकी तरफ से वॉइस नोट पहुंचा हुआ है, चलिए सुनते हैं क्या है वॉइस नोट।
1: हेलो भारती दी नमस्कार, मैं करण मुर्मू हैदराबाद से, मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है हद, गाना का बोल है क्या होती है प्यार की हद, सुना दीजिएगा। मेरा दोस्त रिंटू कुमार चौधरी, पंकज और अभिषेक, ये हम सब गाना सुनेंगे, और ज़रूर सुना दीजिएगा क्योंकि कल मेरा गाना नहीं बजा था।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जौहर जी की तरफ से, जो कि गाने की बोल थी क्या होती है प्यार की हद। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि हाय भारती जी नमस्कार, आप सब रेडियो रिमझिम परिवार को सादर प्रणाम। पवन सा ग्राम मड़ैया खगड़िया से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि हेलो मैम नमस्कार, मैं सुनील यादव दुबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे गाने की तो फरमाइश पहुंच रही है, लेकिन मेरे पास टाइम की भी कमी है और टाइम पूरा ख़त्म हो चुका है, और जिनका गाना आज प्ले नहीं हो पाया उनका गाना कल प्ले होगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है प्ले करेंगे, और प्ले करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ समय हो गया है कार्यक्रम की समाप्ति का। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और विकास कुमार जी की तरफ से जो कि हरपुर से गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, और इनकी तरफ से एक गाना है भाई बहन का प्यार। तो चलिए गाना प्ले करते हुए आप सबसे लूंगी विदा, एंजॉय कीजिए आप सब गाना।

0: मूला एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी।

0: भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86 034 48 652 पे।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और XT125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम।
6: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।
9: 3, 2, 1।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: पठानपट्टी सुपर गेम खुशी।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आपने बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता वास्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं?
2: कुछ फोन ही लगा रहे थे।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: शाहरुख खान का बता दीजिएगा हिंदी सॉन्ग।
1: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा। अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: तूने जो परफॉर्म मेरी जान, तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है,
2: वही।
1: ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी। बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। खाना पीना हो गया?
1: जी खाना पीना तो हो गया है, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ, मैम एक गाना सुनना था।
1: बता दीजिए कौन सा?
0: ये नहीं है, दिल के अरमान।

0: तुम बह गए नया निकला है।
1: नया सॉन्ग दिल के अरमासों में बह गए,
0: हाँ
1: ये तो मतलब पुराना सॉन्ग है, फिर से इसको नया किया गया है।
0: हाँ नया सॉन्ग है।
1: अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी और इसी को बजा लूंगी। ओके,
0: हाँ
1: और गाना सुनाना भी है।
0: हाँ सबसे पहले आपको और जितना रेडियो भी सुन रहे हैं सबको।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं,
0: ठीक है मैम,
1: सुनते
0: थैंक यू।
1: रेडियो रमजिम 90.4।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना।

0: मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: Now pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, सलाम अलैकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
12: बिल्कुल मैम, बता दीजिए गाने की।
11: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ वेस्ट मुंबई से, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
12: आज बहुत दिनों बाद।
11: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
12: अच्छा जी,
11: मुझे गाना सुनना है, कोई भी गाना अच्छा सुना दीजिए।
12: अच्छा, कोई भी गाना आज
11: चाहिए। गाना सुना दीजिए मैम, रब जैसा रूप तुम्हारा देता है सहारा, ये गाना।
12: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
11: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौशर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, चाकी भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, रोबीना जी, दीदी जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरीसा को।
12: अच्छा जी, तो गाना प्ले करें।
11: जी
12: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
11: मैम बोल रही क्या मैम?
12: हाँ
11: जी मैम, बहुत अच्छा।
12: जी जी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कलामोटिया से।
0: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है जी, हालचाल आपने सुनाई?
0: मेरा भी ठीक है।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा बा?
0: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बावे।
1: गर्मी कैसे हो गए? तो बहुत धूप निकल पहले पंजाब मेरे अंदर।
0: अच्छा ना, इन्हें तनिक धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।

0: जी गाना सुने के बाद गाना कॉल लगाओ तो कब से कॉल लगा था लेकिन ठावत नर नहीं ऐसी बिजी की बताओ तर लखा
1: हाँ हाँ बिजी रहो लगे
0: तो गाना सुना दी हमने को
1: बता दें
0: अपने पसंद के सुना दे
1: हम तो रोज सुनाबे करने रहो लोग आपको पसंद दिन भर तो हम
0: फरमाइशी तो हमको बोला करी ला रहे कह दिले रहो सुना दे
1: अच्छा तो कर दिया आज
0: गाना अपने पसंद से सुना दे
1: आज हमारा रघु पसंद के सुने के बाबे
0: हमारा पसंद के सुने के बा नहीं रवि अपने पसंद के सुना
1: ना
0: भोजपुरी बजा दे
1: भोजपुरी
0: हाँ जी
1: रवि बताई ना आज हमको हाथ में बनी रहुआ बताए तब हम सुना
0: आज हम मतलब दो रहो सुना है भोजपुरी में बजा दे कौनो हमारा कौन सब अच्छा बात है उतना खराब भी ना
1: अच्छा
0: खेसारी लाल के गाना बजा दे
1: खेसारी लाल के ठीक बा
0: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठाओ नहीं हुआ के लेकिन का प्रोग्राम में
1: हम तो भारतीय बोला था
0: अगर रवि नंबर तो एक नंबर बताई 6516 वाला जो उनकी कॉल के माध्यम से नंबर बा का नाम बा
1: वो हम ही चलावे
0: अगर रवि चलाई ली तो कॉल के माध्यम से लगाओ जाता तो कॉल रिसीव नहीं करो
1: कॉल
0: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चले प्रोग्राम में अच्छा जी इतना तो हम रेडियो सुन रहे नाम भी नहीं मालूम राहुल नाम बा की केकर नाम बा इसीलिए हमारा नाम मालूम चल रहा है आज की नहीं हाँ जी
1: ना इमे हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करे नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे
0: अच्छा जी अच्छा वहाँ लोग छुट्टी बा
1: ना वहाँ के छुट्टी नहीं क्यों होके ये जीवन
0: ठीक बात है गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके और रघुरा खातिर तीन आदमी के
1: ठीक बाबा तो गाना प्ले करते नहीं
0: हाँ जी कब तक सुनाएंगे शाम के बाजी की काल बाजी
1: आज ना तो काल तो बजबे करी यही दो दिन में बाजी
0: अच्छा खेसारी लाल के बजाये गाना
1: ठीक बा
0: ठीक बा
1: सुनाते रहिए रेडियो 91.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: नमस्कार मैम।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 असम में।
14: जी मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिंग जिला देवघर, झारखंड से मैम।
13: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
14: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
13: हम भी ठीक हैं।
14: और आप रेडियो रंजन के जितने आरजे सर हैं, कैसे हैं?
13: सब कुछ अच्छा है।
14: आज सुना दीजिए मैम, रक्षाबंधन का गाना।
13: गाने की बोल बता दीजिए।
14: भोजपुरी फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आई, इसके बोल हैं।
13: और गाना सुनाना भी है
14: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
13: बिल्कुल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम, राधे श्याम रसिया, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं हमारा तरफ से पकिया।
1: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
1: बिल्कुल,
0: उसकी रंगा फिल्म का गाना है इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है
1: जी, और गाना सुनाना भी है
0: जी। सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है हुस्नी आरा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी है, और सभी गोपालगंज जिला वासियों को और सिवान जिला वासियों को और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
1: ओके, तो गाना सही करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स

0: से जाके अपन पूरा सामान लिया है।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: जी नमस्कार भारती जी।
11: नमस्कार।
10: समाचार बा?
11: समाचार सर ठीक
10: है। आवाज बहुत अच्छा लेता नहीं दी
11: है? थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थे।
10: वो गाना बटे छोटी छलिया के, अलग मिठाइया बा, अलग अलग बा मिठाइया, अलगे बटे रखिया बही हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बटे घर द्वारे गाना बटे रखी
11: छोटू
10: छोटू छलिया।
11: अच्छा, गाना सुनाओ।
10: गाना तो सबसे पहले रुआ के सुनावे के बाद बानी सोनू भाई, सभी भाई बानी महबूब वाला मुस्तफा गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं और अक्षरी जी हैं, अहमद भाई हैं, कुसुम जी, सभी कर्मचारी, जितनी तमाम श्रोता बनी गाना सुनिए उन सभी को गाना दे देते। नमस्कार।
11: नमस्कार। गाना सुनते रहिए रेडियो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबू तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज का दिन है,
1: सुन
0: रहा था कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना मैंने ये कार्यक्रम।
1: अच्छा,
0: कौन बोल रहे मैडम?
1: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: जी जी,
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
0: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास।
1: और गाना सुनाना भी है?
0: गाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पार तुम रहते हो। जी
1: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
0: ठीक है, पर ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
1: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
0: जी
1: अच्छा गा रहे हैं आप।
0: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
1: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
0: जो रंजन में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
1: जी जी बिल्कुल जी। फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी जी, थैंक यू।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक

0: एवं गली के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी शादा पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, सलाम मैम।
4: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
4: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
5: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
4: हाँ थोड़ा सा तो है,
5: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारतीय मैम बोल रही है, फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही है, मनोरमा मैम नहीं है आज?
4: है मनोरमा मैम।
5: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए हम लगाते लगाते कॉल,
4: आधा घंटा लेट है
5: तो आज तो नहीं चलेगा।
4: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
5: अच्छा, आज सब आप ही करेंगी? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा में रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का, सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
4: अच्छा,
5: तो आज हमें 11 सा गाना सुनवाइए,
4: बता दीजिए।
5: जी गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
4: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
5: गाना है
4: बोल रहे हैं, गाना सुनाना भी है।
5: सुनाना है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
4: तो अब अभी क्या?
5: अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
4: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
5: जी मैम हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
4: चलिए, वहाँ का काम खत्म हो गया?
5: जी मैम काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
4: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
5: जी मैम, कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम, तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
4: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी,
5: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
4: अच्छा लगेगा, क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
5: जी मैम एडवांस धन्यवाद, आज मनोरमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
4: होगा फिर कभी।
5: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
4: ओके बाय बाय, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: जी नमस्कार बहन, प्रणाम।
1: प्रणाम।
2: राजू यादव, ग्राम उपरेगा, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
2: हम तो बहन बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वर है बिंदा।
1: जी ऐसे ही होना चाहिए।
2: गीत सुना दीजिए बहन।
1: बिल्कुल बता दीजिए, कौन सा गीत?
2: अपनी पसंद का कोई भी रक्षाबंधन गीत चला दीजिए या किसी गीत में शामिल कर दीजिए। और भोजपुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, वो चलता है 3-4 बजे।
1: तो भोजपुरी केवल संडे को चलता है।
2: हाँ हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस।
1: हाँ हाँ
2: जी जी बहन, प्रणाम।
1: रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहन, प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करे 87-894-18-744।
12: Now pick your phone up.
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: बड़ा लेट है सोनिया नंबर।
14: ना ना सर, फोन कर ले रही है, तने होने ही देरी हो गई है। बोलिए।
15: रामाज प्रसाद बोल रहे हैं, छाया राधे मार्ग से।
14: हाँ हाँ,
15: गाना सुने बा
14: बता दें।
15: जा रे जा रे सुगना जा रे कह दो सजनवा से।
14: गाना सुना हूँ के बा।
15: हाँ ठाकुर बारे हमारे सार रिकॉर्ड करे की बहुत फोन लगा होता रहे, गाना सुना बा, इलेक्शन भाई बारे जितना रेडियो सुना सब कोई।
14: अच्छा जी, चल ठीक बा।
15: हाँ सब ठीक बा, हवा भी बहुत ठंडा भी दिन बा।
14: हाँ हाँ, चले फिर ठीक बा। गाना प्ले करते हैं।
15: नमस्ते
14: नमस्ते, सुनते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 91.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मनोरमा मैम बोल रही है ना?
0: नहीं,
1: भारती मैम बोल रही है।
0: हाँ,
1: तो हम कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, हम भी अच्छे हैं।
0: वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
1: जी मैं पप्पू कुमार साहब पढ़ रहा हूँ ना, बड़ा रियल से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और सब हरी लोग अच्छे हैं?
0: हाँ, सब कोई ठीक है।
1: तो मैम गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: तिरंगा फिल्म में जो राखी बंधन का गाना है, वही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगे?
1: और मैम गाना जितना भी मेरे भाई बहन है सभी सुनेंगे, सभी श्रोता, आप भी सुनिएगा, सभी आगे लोग भी सुनेंगे।
0: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
9: नमस्ते मैम।
10: नमस्ते।
9: हेलो।
10: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
9: आपका छोटा भाई बोल रहा है, रामकुमार, चिंतापुर से।
10: अच्छा, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया पहचान। कैसे हैं आप?
9: और बढ़िया मैम, आप कैसे?
10: हम भी अच्छे हैं।
9: अच्छा, अब रक्षाबंधन आ रहा है ना?
10: राखी आ रहा है
9: तो आपसे राखी भी बनवाना है ना मैम?
10: बिल्कुल आइए, बिल्कुल बांधेंगे।
9: अब मालूम ना कहाँ घर है आपका?
10: रेडियो स्टेशन में ही आ जाइए, यहीं पे बांध दिया जाएगा, और क्या।
9: रेडियो स्टेशन में?
10: हाँ हाँ।
9: अच्छा, आएंगे तो आएंगे वहाँ।
10: बिल्कुल आइए।
9: तो कोई आने देगा हम?
10: अब ये तो मैंने बता सकते, ये कृपा शंकर सर भी बताएंगे।
9: अच्छा, और सोनी सिस्टर कैसी है?
10: वो भी अच्छी हैं।
9: ये मुनारमा जी?
10: सब तो अच्छे हैं, ये भी अच्छी
9: हैं। अच्छा, आपसे बहुत काफी दिन हो गया था बात करने हुए। खाली मुनारमा जी से बात हो रहा था, हम उनसे पूछ रहे थे कि भारती मैम कहाँ चली गई, भारती मैम कहाँ चली गई। वो बोले कि उन लोग का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
10: नहीं तो बोला जो होता है ना उसमें अभी ना दीजिए।
9: और बताइए क्या हाल चाल है?
10: ठीक है।
9: मौसम कैसा है गोपालगंज में?
10: गोपालगंज का मौसम अभी बहुत ही सुहाना है।
9: अच्छा, रक्षाबंधन से हम 2-4 दिन पहले आ रहे हैं।
10: आइए। बिल्कुल
9: आएंगे, राखियों से बनवा करके, गिफ्ट उफ्ट दे करके फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने नोएडा।
10: मैंने बहुत खुश होंगी क्या इस बार आपके, मतलब आप जा रहे हैं उन लोगों के पास?
9: नहीं, मेरे को आए हुए आज 2 महीना दिन हो गया। पहुँचे के रक्षाबंधन में तो जाना ही जाना है।
10: हमेशा कभी राखी में घर ही न रहे हैं, कभी दूर भी रहे हैं।
9: नहीं कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में जाना ही जाना है, रक्षाबंधन में छठ पूजा में।
10: सब बढ़िया है।
9: हाँ मम्मी छठ करती है ना, तो छठ पूजा में जाना जरूरी रहता है।
10: कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए।
9: आज गाना सुनना है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, यही वाली सॉन्ग।
10: कितना अच्छा गाते हैं, फिर भी गाते नहीं सुनाते हैं।
9: कितना अच्छा गाते हैं मैडम, मजबूरी में हम आए हैं ना दिल्ली में, यहाँ शौक से कमाते हैं।
10: अच्छा।
9: मेरे दो दो भाई विदेश रहते हैं दुबई, एक का नाम है राजा, एक का नाम है निरंजन।
10: अच्छा। हाँ।
9: छोटा वाला निरंजन है निरंजन गुप्ता, और माझिल वाला है वो राजन गुप्ता है।
10: अच्छा।
9: और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा ही एक शादी हुआ है, उन लोग का अभी नहीं हुआ है, अभी उन लोग अभी कमा रहा है खा रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी अकेला मौज में रहा है।
10: हाँ।
9: अभी घर का प्लानिंग है, अभी घर और बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको उन लोग को शादी करेंगे।
10: प्लानिंग के बाद काम होता है।
9: और सब मजे में है ना मैम?
10: सब मजे में।
9: ये सॉन्ग आपको सबसे पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं का, जितना हिमतापुर को रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको।
10: जी जी बिल्कुल।
9: हाँ
10: कैसे गाना प्ले करते हैं सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
9: ठीक है, ओके मैम।
10: ओके
9: नमस्ते। नमस्ते
10: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मधुसर से राजू कुमार बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको?
1: ठीक है, गाना सुनना है।
0: बता दीजिए कौन सा
1: गाना सुनना है। नाम है धुआं धुआं।
0: हिंदी सॉन्ग है ना?
1: हाँ, हिंदी सॉन्ग
0: जी बिल्कुल। और गाना सुनाना भी है?
1: अभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को।
0: ओके, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ठीक है।

झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिलजले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
10: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाहिया ढाला से बोल रहा हूँ।
9: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
10: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाइए।
9: मेरा ठीक है, तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
10: चले गए थे उमरा करने, हज करने जाया जाता है ना।
9: हाँ,
10: इसमें मक्का मदीना चले गए थे, एक महीना उसी में लग गया
9: ना,
10: इसलिए बात वहाँ का सिम अलग रहा है ना। हमारे प्रोग्राम आपका सुनते थे, वहाँ भी परेशान होता था तो लगता था आपका। हमारे कॉल नहीं लग रहा था, वहाँ भी सुन रहे थे। मौसम तो ठीक है, पानी वगैरह हल्का फुल्का हो जा रहा है।
9: पानी हो ही जा रहा है और अभी भी थोड़ा मौसम, उतना धूप नहीं है
10: ना, हल्का धूप और छाव दोनों है। आपका कस्टमर इतना हो गया है रिव्यू रिव्यू के, बहुत देर तक करना पड़ता है तब जगह लगता है। बहुत देर से लगा रहे थे।
9: पड़े हुए हैं थोड़ा।
10: और सब बढ़िया है, हमको गाना सुनाइएगा।
9: बिल्कुल बता दीजिए।
10: ये नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसा नाता।
9: अच्छा, और गाना सुनाना भी है।
10: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर फौजी से रिटायर है कन्हैया प्रसाद गुमनिया के हैं, तो सिपाया डाला तो इधर आप आई नहीं होगी। यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, बीटेक कॉलेज सब यही पर है, हमारे ही पास है। राजापुर मेला यहीं से जाया जाता है।
9: उधर कभी गए हुए हैं।
10: हाँ, राजापुर मेला आइए एक बार।
9: बिल्कुल आएंगे कभी।
10: हाँ, मेला लगता है तो आप याद करेंगे कि मेला कल आए थे या परसों आए।
9: अच्छा जी, बिल्कुल।
10: हाँ, आइएगा हमारे यहाँ दुकान पर, रुकिएगा अपना मेडिकल हॉल। हाँ, यहीं पर रुकिएगा, नाश्ता पानी यहीं पर होगा, खाना भी आपको खिलाएंगे।
9: अच्छा।
10: आप लोगों से हम जुड़ गए, रेडियो हमको लगा हो गया है। हाँ, बराबर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
9: चलिए, बढ़िया है।
10: ठीक है, सुना दीजिएगा। हो सकता है कि कल कहीं जाना है।
9: अच्छा, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
10: हाँ हाँ, ठीक है, शाम में सुनेगा।
9: ठीक है,
10: ठीक है, धन्यवाद।
9: रेडियो रमजी में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो में।
1: जी मैम नमस्ते, मैं ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ।
0: जी जी
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: सब आप लोगों का कृपा है, हम लोग भी बढ़िया है, बस काम काज चल रहा है। अभी फिलहाल मैं पुणे में है हम।
0: अच्छा
1: जी, और अपना गोपालगंज का बताइए कैसा है मौसम वहाँ का?
0: गोपालगंज
1: बारिश,
0: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है, बारिश जैसा ही मौसम।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ भी तो बादल छाया हुआ है, कभी कभी रुक रुक के बारिश भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा मौसम का हो रहता है, बारिश आता जाता रहता है यहाँ का।
0: चलिए उतना से गर्मी नहीं होता होगा ज्यादा।
1: हाँ मैम, अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं है, मौसम तो एकदम ठंडा है, सुहाना ही मौसम है लगभग मानिए तो।
0: जैसे आप क्या काम करते हैं?
1: यहाँ पे मैं फैब्रिकेशन का काम। और एक गाना सुनना था मैम,
0: बता दीजिए।
1: मुझे ला कर समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी। गाना की बोल रही है और मेरा दोस्त है प्रमोद और अमित ओम प्रकाश, इन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और खास करके रेडियो रिमझिम परिवार को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
0: बिल्कुल,
1: लगाते हैं कॉल लगता नहीं है, थोड़ा अफसोस होता है कि, लेकिन भाई अभी भी समझदारी होता है कि भाई कब अगर मेरा चांस मिल जाएगा तो देखा जाएगा, तो लगता है तो इतनी महसूस होता है कि चलिए मेहनत सफल हो गई तो कुछ अलग ही, मतलब
0: कुछ अलग ही
1: अपना। हाँ हाँ, आप लोग से बात होता है तो थोड़ा मन का सुकून मिलता है कि चलो रेडियो रंजन के माध्यम से दूर दूर तक कहाँ कहाँ जितना भी श्रोता सब सुनते हैं, एकजुट होते हैं। जब हेलो माई चॉइस प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसका उस टाइम का पल ही कुछ अलग ही है कि हाँ भाई एक परिवार हो जाता है ना, सब जुड़ता है एक साथ, तो अच्छा लगता है,
0: जुटते हैं सबको, अपनी बातें करते हैं।
1: जी जी जी, तो मैं तो बहुत पुराना हूँ रेडियो रंजन का, बहुत कॉल लगाता हूँ लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो फिर भी मैं जानता हूँ कि अफसोस करने की क्या बात है भाई, सभी दर्दों को सभी लोगों का मन का जितना मुझे खुशी होती होगी नहीं और लोगों को भी खुशी होता होगा ना कि भाई हम भी बात करेंगे, हम भी अपना फरमाइश चॉइस में अपना गाना सुनेंगे। और सबसे हाल चाल जब मिलता है तो हम लोग पूना में भी रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अपना गांव का अपने जवार का जो भी हम लोग का कटिया में चाहे कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है, चाहे अपने जिला में कोई भी मतलब कार्य होने वाला होता है नया, चाहे कुछ नया नियम आने वाला होता है, तो रेडियो रिमझिम के माध्यम से सब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई अपने जिला में काम होने वाला है, ऐसा हो रहा है, यहाँ ये चीज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि पहले अपना यहाँ नहीं था लेकिन वो आप लोगों की कृपा थी कि हम लोग के लिए, हम लोग खातिर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जितना भी अगर तारीफ करेंगे हमारे लिए तो कम है।
0: आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका।
1: जी जी जी मैम, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
1: खाना वाना खाई?
0: हाँ, खाना खा के आते हैं।
1: अच्छा, हम लोग भी ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी के दौरान मेरे को याद आया कि भाई आज कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल किया। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लगभग एक घंटा काम छोड़ दिए थे, जब काम होता है जब ये दिन आता है तो सोचते हैं पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद काम देखा जाएगा। बात आप लोगों से होता है तो लगता है कि हाँ, मतलब सुकून दिल का मिल गया कि हाँ मेहनत मेरा जो जारी था वो सफल लग गया तो अच्छा होता है।
0: चलिए आप, अच्छा लगा
1: आपसे भी बात करके मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी जितना भी पहले आपसे पहले जो भी आपका मनोरमा नाम है ना?
0: नहीं।
1: अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम?
0: मेरा नाम भारती।
1: अच्छा भारती, ठीक है मैम।
0: गाना प्ले करें?
1: हाँ मैम, गाना प्ले करिए। नमस्ते।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
3: प्रसाद क्लिनिक।
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती।

0: आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491151 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: श्रोता लोगिन नमस्कार, रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ई बिरहा।

0: जितना भी भोजपुरिया भाई बाणन, भोजपुरी समझे वाला सब भाई के बहुत बहुत प्रणाम बा। हमके आशा ना विश्वास बा कि आप लोग जहाँ भी होखब मस्त होखब, स्वस्थ होखब, हंसत होखब। तमाम आप लोग कांड सुनीला हमरा आवाज में बहुत दुलार प्यार जोन दिला, एक खाती हम आभारी बानी। एक और कांड प्रकाश में आइल बा और हैवानियत के भी हद हो गई बा। बाहर कलयुग और बाहर कलयुग के चरण, शायद अभी कहल जाता कि कलयुग का पहला चरण चला था।
1: अरे वाह,
0: चौथा चरण में का हुई समझ में न आवत बा। बाहर जमाना और जमाना के लोग कितना नीच स्तर पर उतर चुकल बणन कुछ समझ में न आवत बा। ध्यान दिहन अगर मिजाज से ए बिरहा की सुनब आप लोग, एक बार सोचे पर मजबूर हो खब कि दुनिया कहाँ जाता, ये दुनिया के लोग कहाँ जाता। चार लाइन कवि जी बड़ा अच्छा भाव दिहलन है भूमिका के लाइन में।

0: मास्टर एक लाइन कवाली के टुकड़ा है।
1: वाह
0: का लाइन बा यह तरज हो।

गाना का बड़ा सुंदर भाव दिहल गल का अब सजा सहूं कितना अब

बात कहां से लिहल गई? आप लोग न्यूज में, सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखत हो, पढ़त हुई हैं। कहानी बड़ा भयावह बा, लेकिन कहां से उठल बा कहानी? नजम के लाइन दिहल गल का,

0: तनी बात समझ ला। राजस्थान के अंदर गांव का नाम गंगानगर, वहीं की ये कहानी है। एक मात्र 13 वर्ष की बेटी भगवान हरे कुखी पतई देलन, हर घर में बेटी है। वो 13 वर्ष की बिटिया कहीं अपने गई थी सखी से मिलने के लिए, और सखी से मिलकर आ रही थी, रास्ते में लेट हो गया, रात हो गई आने में। लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या बाबू?
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या बाबू? तरज बा मास्टर बड़के दा का तरज कलाइन बा।
8: यह तरज है कि रतिया में जब रजनी, रतिया में जब रजनी।

अपने घर से निकलती है बाबू गंगानगर से, और विजयनगर उसकी कोई सखी थी उसी से मिलने के लिए जाती है। उधर से आने में उसे लेट हो गई, साधन नहीं मिल पा रहा था और रास्ते में लेट हो गया। लेकिन रास्ते में बाबू उस रात को होता है क्या, तरज बात तनी से बढ़ के द मास्टर

उस रात को जब कोई साधन नहीं मिला बाबू, रास्ते में एक ई रिक्शा चलाने वाला दिखाई पड़ा है। हाथ देती है, ई रिक्शा वाला रोक दिया, जिसका नाम राम बाबू शायद बताया गया सोशल मीडिया पर, दिखाया भी गया सोशल मीडिया पर। राम बाबू नामक वो रिक्शा चालक रोकता है, कहती है कि भैया कोई साधन नहीं मिल रहा है, हमें गंगा नगर तक पहुंचा दो। कहता है कि ठीक है, आओ बैठ जाओ। लड़की को बैठा लिया, लेकिन देखें लड़की क्या जानती थी कि मेरे ऊपर विपत का पहाड़ टूटने वाला है। लड़की के का पतावा, मात्र उम्र 13 वर्ष बतावल गई, नाबालिग लड़की है। और राम बाबू नामक रिक्शा चालक उस लड़की को एक होटल तक ले जाता है, होटल पर ले जा करके और होटल के मालिक को बेच देता है। लड़की को जब बेच दिया, वहीं पर वो मालिक, होटल का मालिक और मैनेजर मिल करके लड़की को उतार लिए। लेकिन उस लड़की के साथ मालिक, मैनेजर और लोग करते हैं कि क्या बाबूजी,

कबो कबो हो साया वे।

0: उस लड़की को बाबू उस होटल के मालिक और मैनेजर मिलकर के रेप किए, बलात्कार किए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया से ये प्रमाण मिला कि उस लड़की के साथ होटल के मालिक और मैनेजर नहीं बल्कि 30 लोग लगभग बलात्कार करते रहे। हर घर में बेटी बहन है, एक 13 वरिष्ठ लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ 30 लोग बलात्कार करते हैं बाबू, लड़की कहां से बर्दाश्त कर पाए। बेहोश हो जाती थी, कभी कभी होश में रोते हुए आती थी तो साले सब दारू पिलाते थे। जबरन जबरदस्ती, दिन हो या रात हो, उस लड़की को दारू पिला पिला करके बलात्कार करते रहे।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: तो भौजी, आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
0: इसके बाद 22 जून 2026 को उस लड़की को छोड़ दिए लोग, और जब छोड़े हैं किसी तरह से लड़की गिरती पड़ती थाने तक एक जाती है और दरोगा जी से गुहार लगाती है, एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? कहते अस्त व्यस्त शरीर है, फटे हुए कपड़े हैं, लेकिन रो करके वो 13 वर्ष की मासूम बेटी उस दरोगा जी से गुहार लगा करके रोती है और कहती है, क्या

0: दरोगा जी जब उस लड़की की इस हाल को देखते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के तुरंत हॉस्पिटल में उपचार कराने हेतु भर्ती किए, लेकिन बाबू लड़की रो करके कहती है कि मेरी माँ को बुला दीजिए दरोगा जी, मैं हो सकता है कि मैं बचू नहीं, हो सकता हम मर जाए, लेकिन मरे से पहले तनी माई से भेंट कर चाहता नहीं। घर पर खबर दिया गया बाबू, माँ बाप रोते बिलखते हॉस्पिटल में आए हैं और जब बेटी को देखते हैं, एक तरफ माँ गिर जाती है, एक तरफ पिता रो करके गिर जाता है, लेकिन उस समय उसकी माँ बेड पर उस बेटी के बैठी हुई है और बिटिया रो रही है, सामने बेड पर पड़ी है, उस समय रो करके अपनी माँ की सूरत देख करके और अपनी माँ से वो लड़की एक बात कहती है। क्या कहती है बाबू? लड़की रोत बे और माई से एक बात अपने कहत बे, माई बेड पर बैठल बे, बिटिया बेड पर पड़ल बे, पानी चढ़त बा, उपचार होत बा, लेकिन वो लड़की अपने माई से रोके का कहलस बाबू
1: कि कैसे के करी हम सब रवाये माई, कैसे के करी हम सब रवाये

एक तरफ माँ रो रही है बेड पर, एक तरफ बेटी रो रही है। एक बात तौरू 13 बरिश की बिटिया कहत बे अपने मतारी से, का कहलस कि सुन सान मंगी।

रो करके बिटिया 13 बरस की बेटी कहती है कि माँ अब मैं इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ, कौन से मुंह लेकर के मैं गांव में जाऊंगी, मेरे मांग में कौन सिंदूर भरेगा, जिंदगी मेरा नरक हो गया माँ, इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाना चाहती हूँ माँ। माई बेटी के बात सुन के रोत वे बाबू कई का सकत वे, लेकिन जब बेटी के इतना बात सुनन माई बाबू बगले में बाबू खड़ा हुन बेटी का बात सुनत हुन, ओ समय मतारी रो के एक बात कहलस का, ये माई रोत और बेटी से कहलस कि बेटी इसे काहे कहत अड़ो, का कहत पे माई

0: आखिर बाबू अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई खेत, जो होना था हो गया, लड़की बर्बाद हो गई, हॉस्पिटल में तड़पती रही, जिंदगी और मौत के बीच खेलती रही वो लड़की।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
2: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
12: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
0: जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन देखें कभी जी टेरी के भाव दिए हैं क्या? बढ़ के दम मास्टर।
13: अब गंगा जमुना की धारा थम गई, गम में सिसक रहे थे सूरज चांद सितारा।
0: आज कहना है कभी का, सरकार विचार करे इस पर क्या,
13: सरकार विचार करे इस पर क्या, यही फील गुड है भारत।
0: आज हम कहते हैं कि हमारा भारत फील गुड में है, हमारा भारत जो है हिंदुस्तान आज डिजिटल हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान डिजिटल हो गया, गुड फील है भारत। तो कवि का कहना है कि सरकार विचार करे इस पर क्या, यही फील गुड है भारत।
13: जनमानस रोड पे उतरेगा तो मच जाएगा महाभारत, लगभग 80 बेटी नित दिन, लगभग 80 बेटी नित दिन दुष्कर्म की आग में जलती है। सब लोग मिलकर बतलाएं कि किस किस में गलती है। गंदी नाली के कीड़ों को यदि जल्द नहीं फांसी होगी, महिला आयोग ललकार कहे फूलन पुतली झांसी होगी। अगर अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है बाबू, अगर गद्दी पर बैठे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, तो अंत में वही नेपाल और बांग्लादेश की हालत होगी। जिस दिन पब्लिक रोड पर उतर जाएगी, उस दिन सरकार को गद्दी छोड़ करके भागना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो। सरकार से ही, जनता से ही, पब्लिक से ही सरकार बनती है। सरकार गद्दी पर बैठ जाती है तो भूल जाती है कि हमने इलेक्शन के वक्त क्या क्या वादा किया था। इलेक्शन में तो हजारों वादा कर देते हैं लोग, लेकिन वो दिन भूल जाते हैं। तो बात कबीर जी के लिखे के पड़ल अल्लाह कलाइन बड़गेदा।

तनी बात समझ ला। ए बात के सुन के, ए बात के सुन के बाबू जिला एसपी हरिशंकर यादव जी आते हैं और साथ में रीजनल एसपी कैलाश दान आए। दोषी पकड़ाए, जो जो दोषी थे सोशल मीडिया पर आप लोग देखे होंगे, लोग पब्लिक 300 लोगों को मारते हुए पुलिस वालों के सामने थाने पर ले जाती है और जब पकड़ाए हैं सभी लोग ले जाकर के जेल के अंदर बंद किए, आज केस चलना शुरू हुआ। लेकिन वो लड़की जो 13 वर्ष की मासूम बेटी थी आखिर इस जंग को नहीं लड़ पाई। बाबू जो हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी मौत के बीच वो जूझ रही थी, 3-4 दिन बीतते बीतते उसी हॉस्पिटल में अपना अंतिम दम को तोड़ देती है। एक माँ की गोद बेटी के लिए सुना हो गया, एक पिता का गोद बेटी के लिए सुना हो गया। बाबू बेटी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी, लेकिन आज वो कातिल जेल के अंदर बंद हैं, केस चल रहा है। हिंदुस्तान के लोग जो भी इस घटना को सुनते हैं, सभी लोगों की मुंह से आवाज आती है कि उन दरिंदों को की तो फांसी होना चाहिए, नहीं तो उम्र कैद होना चाहिए। कबीर जी गाना के अंतिम लाइन में दिहलन है का दिहलन है बड़ी के दमास्टर,

0: आखिर जब तक सरकार इस पर नहीं विचार करेगी बाबू, घटना आए दिन रोज इसी तरह होगा। आज दूसरे पर है, लेकिन जिस पर पड़ता है वही जानता है। सबके घर में बहन बेटी है, बहन बेटियों का सुरक्षा अब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज आए दिन जो घटना सुनने को मिल रहा है इसी तरह से होता रहेगा और सरकार आंख बंद करके गद्दी पर बैठी रहेगी। तो हम लोगों को विचार करना है कि अब क्या करना चाहिए। हम लोगों को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार भी बदलेगी। गाना के अंतिम प्रमाण रहल।
1: जय जखार गुरु जद्दू श्रीनाथ जी की फुलवारी। कथन करे कवि अनुज लाल निसार मितवा की तैयारी। अरे गंगा जमुना की धारा थम गई, गाते

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुत ही अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए की दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम।
12: सुनो दिल।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए

0: अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम,
4: सुनो दिल से।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
6: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन पदों को भरा जाना है। संयुक्त निदेशक विधि, सहायक आयुक्त, लेखा अधिकारी, निजी सचिव, सहायक आशुलिपिक ग्रेड 1 तथा विधिक सहायक। अधिक जानकारी के लिए देखिए उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट consumeraffairs.nic.in। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में भरे जाने हैं ये पद, उप सचिव सामान्य प्रशासन, सहायक संपादक, वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, तकनीकी सहायक, कार्यक्रम सहायक, प्रकाशन सहायक, प्रूफ रीडर सह सामान्य सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2, संदेश वाहक सह चालक, वैन चालक, कनिष्ठ लिपिक और विविध कार्य कर्मचारी। पात्रता सहित अधिक जानकारी के लिए देखिए अकादमी की वेबसाइट साहित्य-अकादमी.gov.in। राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद आमंत्रित करती है अनुवादक के 2 पदों को भरने के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर ncpsl.csu.co.in। आनुवांशिकी प्रभाग ICAR में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए परियोजना सहयोगी 1 पद, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता 2 पद, युवा पेशेवर 2 पद, युवा पेशेवर IT 2 पद तथा युवा पेशेवर F&A 2 पद। ये वॉक इन इंटरव्यू 2 सितंबर 2026 और 3 सितंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए आनुवांशिकी प्रभाग ICAR IARI की वेबसाइट www.iari.res.in। CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सुरक्षा अधिकारी, रिसेप्शनिस्ट और ड्राइवर। विस्तृत विज्ञापन और उम्मीदवारों के लिए निर्देशों को देखने के लिए आप देखिए संगठन की वेबसाइट www.csio.res.in। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भरे जाने हैं ये पद, प्रबंधक इंजीनियरिंग सिविल, प्रबंधक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, प्रबंधक वित्त, प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधक वास्तु, प्रबंधक विधि, प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं, प्रबंधक प्रचालन विभाग, प्रबंधक वाणिज्यिक, प्रबंधक निगमित योजना एवं प्रबंधन सेवाएं, प्रबंधक निगमित संचार, कनिष्ठ कार्यपालक वित्त, कनिष्ठ कार्यपालक विधि, कनिष्ठ कार्यपालक प्रचालन और कनिष्ठ कार्यपालक सर्वेक्षण एवं कार्टोग्राफी। शैक्षणिक योग्यता, वेतन, आरक्षण, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.aai.aero। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय इन अशैक्षणिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने हैं। पद हैं अवर श्रेणी लिपिक एक पद, रसोई सहायक एक पद, प्रयोगशाला परिचर एक पद और संविदा नियुक्ति के आधार पर भरा जाने वाला कनिष्ठ अभियंता सिविल का एक पद। निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम, शर्तों और अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
16: रेडियो रिमझिम,
15: सुनो दिल से।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111238878 और 9111238879 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779801071 और 9779810321617 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: Discussions are expected. दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
6: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
7: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
8: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
10: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
11: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्वकप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
13: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
14: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
15: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
16: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
14: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
17: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और

0: या 9056 57 9002।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। नेपाल से आने वाले बाढ़ का खतरा फिलहाल टला, रक्षाबंधन पर पूरे दिन बांधी जाएगी राखी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जिला पदाधिकारी सख्त, संत रविदास विकास शिविर का हुआ आयोजन, और ट्रक से पकड़ी गई 1327 लीटर शराब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गंडक नदी में नेपाल के रास्ते आने वाली बाढ़ की तबाही फिलहाल टल गई और लोगों ने राहत की सांस ली। गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन हालांकि अलर्ट मूड पर है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी कल देर रात डिस्चार्ज किया गया, जो नदी से गुजर गया है। पानी के गुजरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरी रात जिला प्रशासन के लोग तटबंधों का निरीक्षण करते रहे और नदी में जलस्तर के बहाव की मॉनिटरिंग करते रहे। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी में फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि तिब्बत से आई इस भारी तबाही को लेकर लोगों में काफी परेशानी देखी जा रही थी, हालांकि जिला प्रशासन के सूझबूझ और पानी के नियंत्रण से संबंधित व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की समस्या नहीं आई और सभी डिस्चार्ज पानी पूरी तरह से जिले से निकल गया। एहतियात के तौर पर जिले के 6 प्रखंडों के 43 गांवों में अधिकारियों की अभी भी तैनाती है और तटबंध तथा निचले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे धूमधाम और उल्लास के साथ 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए राखियों के दुकान पर देर शाम तक राखी खरीदती हुई देखी गई। हालांकि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार पूरे दिन विधि विधान से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को इस बार बहनों के लिए त्योहार की एक खास बात यह है कि राखी बांधने के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिसको लेकर पूरे दिन रक्षाबंधन मनाने और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की राह खुली हुई है। इसी दिन खंड चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। ज्योतिष

0: चारे के अनुसार इस बार रक्षाबंधन भद्रा से मुक्त रहेगा। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिले में संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की सुविधा, आधारभूत संरचना, नामांकन, डिजिटल शिक्षा, आदर्श विद्यालयों के संचालन तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश दिया। इस दौरान सभी आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने अपने विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास सुचारू रूप से एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आज बसडीला पंचायत के वार्ड नंबर 9 में श्री संत रविदास विकास शिविर का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के पंचायत में हुए इस आयोजन शिविर का शुभारंभ जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। विकास शिविर के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी तथा उनका लाभ भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों को उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएं, आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करें, पात्र लाभुकों के आवेदनों की जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान बसडीला पंचायत के बहुत सारे लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मीरगंज पुलिस ने विशेष छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही एक डीसीएम ट्रक में भारी मात्रा में रखी हुई विदेशी शराब को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते हुए जिस व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ा गया है, यह आरोपी जलालुद्दीन अंसारी, पिता एयाज अंसारी, यह उत्तर प्रदेश कुशी नगर के कुबेर स्थान का रहने वाला है। इसके पास से गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है, साथ ही मोबाइल फोन को भी जब्त कर इस शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के मोबाइल फोन के संदर्भ में जब आवश्यक अनुसंधान किया गया तो आरोपी ने बताया कि उसके पास से पकड़ी गई गाड़ी और शराब राजन भाई का है। राजन भाई उत्तर प्रदेश के पथरदेवा का रहने वाला है। उससे भी संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल फोन संपर्क में नहीं था। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई कर रही है और इस शराब के कंसाइनमेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कई घाटों और संवेदनशील इलाकों का आज निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और गंडक विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा तटबंध से सटे गांव के लोगों से भी अपील की गई कि वे घबराए नहीं, क्योंकि फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर की स्थिति नियंत्रण में है। आज समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान की शुरुआत हुई। जिले की 5,920 महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई है, तो वहीं 523 महिलाओं को व्यवसाय बढ़ाने के लिए 20,000 रुपए की दूसरी किस्त और जीविका निधि के तहत 25 लाभुकों को कुल 1,10,00,000 रुपए का ऋण भी वितरित किया गया है। गोपालगंज में महावीरी जुलूस और झंडा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आज बुधवार की रात विद्युत की आपूर्ति रात 11:30 से सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान टाउन फीडर के आसपास के इलाकों में विद्युत की समस्या रहेगी। लोगों से आवश्यक कार्य समय से पूरा कर लेने का निवेदन भी किया गया। गैर संचारी रोगों की समय रहते पहचान और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 1 सितंबर से 30 नवंबर 2028 तक संचालित होगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें सामुदायिक स्तर पर घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। संदिग्ध एवं रोग से ग्रसित मरीजों को आवश्यक परामर्श, दवा तथा आगे की जाँच और उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से जोड़ा जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा पंचायत से 14 वर्षीय युवक सुमित कुमार लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि इसकी तलाश की जा रही है। पुलिस और लोगों से भी सहायता की गुहार लगाई गई है। परिजनों ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। बताया जा रहा है कि यह 14 वर्षीय सुमित कुमार देहाती खबर न्यूज सोशल मीडिया के पत्रकार शंभू यादव का भतीजा है और एकनाथ यादव का पुत्र बताया जा रहा है। घर से टहलने के लिए निकला था और यह लापता हो गया है। परिजन अब इसकी तलाश में जुटे हुए हैं। माझा थाना क्षेत्र के बिरती टोला गांव में पोखरा में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बेलाल अहमद उर्फ बेलाल हजरत है। यह आरोपी तिरबिरवा थाना नगर का रहने वाला है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महावीरी अखाड़ा को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सभी लोगों से स्पष्ट निर्देश दिया है कि महावीरी अखाड़ा में हर हाल में लाइसेंस लेना होगा। अगर जुलूस का आयोजन करना है तो बिना प्रशासन के अनुमति के जुलूस का आयोजन नहीं होगा। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अनुमति के अनुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हथियारों के प्रदर्शन, अश्लील गाने और नृत्य पर भी रोक रहेगी। अफवाह और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की टीम लगातार निगरानी रख रही है। नगर थाना क्षेत्र के हरपुर रजोखर गांव में एक महिला से चेन छीनने का विरोध करने पर उस पर चाकू से हमला किया गया और उसके पति को भी जख्मी किया गया है। इस मामले में नगर थाना की पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि हरपुर रजोखर गांव में घर के बाहर खड़ी गायत्री देवी से बदमाशों ने चेन छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पति हरकेश महतो पर भी जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पीड़ित के आवेदन पर मामले की जांच कर रही है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 152 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी साहेब आलम पिता मोजालिस मियां साकिन डबरिया मकरी टोला थाना नौतन जिला बेतिया का रहने वाला है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फॉर्म के पास एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। पति के दूसरी शादी को लेकर विवाद चल रहा था, हालांकि इसमें कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नेपाल से आने वाले बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। रक्षाबंधन पर पूरे दिन बांधी जाएगी राखी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जिला पदाधिकारी सख्त। संत रविदास विकास शिविर का हुआ आयोजन। और ट्रक से पकड़ी गई 1327 लीटर शराब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: कूला एवं घुट अपना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट।

0: टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है, केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
1: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
0: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034486652 पे।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: जय शिव के भक्त हो।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: जो इन्ना ने बनानी हो अपनी औरत तो दे दे सारी दौलत।
1: सोनियो मलाई दे डोनियो, तुझ पर तो मैंने कारों का खजाना लुटा छोड़ना है।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801326117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री

राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रूपये हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रूपये पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क के डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज डिफेंस प्रोडक्शन नियर।
3: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिदम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।
2: सीधा सीधी बताएं कि स्टाइल में बताएं।
3: सीधा सीधी का बताए स्टाइल में बताओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: पठानपट्टी से बोल रही हूँ खुशी।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक हूँ, आपने बताइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
2: नाश्ता हो गया?
1: हाँ, नाश्ता करके आते हैं। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं?
2: कुछ फोन ही लगा रहे थे।
1: अच्छा, कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: शाहरुख खान का बता दीजिएगा हिंदी सॉन्ग।
1: शाहरुख खान का तो हिंदी सॉन्ग बहुत सारा अच्छा अच्छा है, आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: तूने जो पठान मेरी जान, तुझे मर मिट जाऊंगा, वही वाला।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है,
2: हाँ वही।
1: ओके, तो गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी। दोस्तों आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या खैरियत है?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, सलाम अलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
7: बिल्कुल मैम, बता दीजिए गाने की।
6: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ वेस्ट मुंबई से, मैं गोपालगंज के रहने वाला हूँ।
7: आज बहुत दिनों बाद।
6: जी मैम, थोड़ा टाइम नहीं मिलता था इसी के लिए।
7: अच्छा जी,
6: मुझे गाना सुनना है, कोई भी गाना अच्छा सुना दीजिए।
7: अच्छा, कोई भी गाना आज।
6: अच्छा, ये गाना सुना दीजिए मैम, रब जैसा रूप तुम्हारा देता है सहारा, ये गाना।
7: और गाना सुनाएंगे भी किसी को?
6: हाँ जी, सबसे पहले आपको, मासूम, कौशर, जुनेद, कमरान भाई, अरमान भाई, नौशाद भाई, साकी भाई, फरहान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लकी भाई, रुबीना जी, दीदी जी, हिना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, सबनम जी, गुलशन जी, रोशनी जी, सलेहा जी, अफरीन जी, अरीसा को।
7: अच्छा जी, तो गाना प्ले करें
6: जी।
7: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: वर्मा कुमार बोल रहे हैं कलामोटिया से।
0: हाँ जी, क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है जी, हालचाल आपना सुनाई।
0: मेरा भी ठीक है।
1: गोपालगंज का मौसम कैसा था?
0: गोपालगंज के तो मौसम अभी ठीक बावे।
1: गर्मी कैसे हो रही है? बहुत धूप निकल रहा है पंजाब के अंदर।
0: अच्छा ना, इन्हें तनिक धूप नहीं है और थोड़ा थोड़ा गर्मी बा।
1: अच्छा जी, गाना सुनने के बाद गाना कॉल लगाओ तनिक कॉल लगाता लेकिन उठावत नर नहीं ऐसी बिजी बताओ तर लख।
0: हाँ हाँ, बिजी रहा लगे।
1: गाना सुना दी हमने को
0: बता दें,
1: अपने पसंद के सुना दे कौन?
0: हम तो रोज सुनाबे करने रहो लोगन के अपना पसंद दिन भर तो हम
1: फरमाइशी तो हमको बना करी ला रहे तो कह दिले रहो सुना दे।
0: अच्छा तो कर दिया आज।
1: ना ना, अपने पसंद से सुना दे।
0: आज हमारा रघु पसंद के सुने के बाबे।
1: हमारा पसंद के सुने के बा? नहीं रघु, अपने पसंद के सुना दे।
0: ना ना,
1: भोजपुरी बजा दे कौन?
0: भोजपुरी।
1: हाँ जी
0: रघु बताई ना, आज हम कहा तो बनी रहुआ बताए तब हम सुना।
1: आज हम मतलब दो रोज सुना है।
0: हाँ
1: भोजपुरी में बजा दे कौन? हमारा कौन सब अच्छा बताए, उतना खराब भी ना।
0: अच्छा,
1: खेसारी लाल के गाना बजा दे।
0: खेसारी लाल के ठीक बा।
1: और भारती के नंबर नहीं लगा लगा तो उठावत नहीं हुआ के लेकिन का प्रोग्राम में
0: हम तो भारतीय बोला था।
1: अगर अगर नंबर तो एक नंबर बता 6516 वाला जो की कॉल के माध्यम से हूँ तो का नंबर बा वहाँ का नाम बा
0: वो हम ही चलावे।
1: अगर रवि चलाई ली तो कॉल के माध्यम से लगा देता तो कॉल रिसीव नहीं करो
0: कॉल
1: तो प्रोग्राम तो रोज रोज चले प्रोग्राम में। अच्छा जी, इतना तो हम रेडियो सुन नाम भी नहीं मालूम राहुल नाम बा की केकर नाम बा इसीलिए हमारा नाम मालूम चल रहा है। नहीं जी
0: ना, इसमें हम कबू कबू मतलब हम रिकॉर्ड करे नहीं लेकिन ज्यादातर उसमें हम ही रहे।
1: अच्छा जी, अच्छा छुट्टी बा
0: ना? वहाँ के छुट्टी नहीं थी वहाँ के एक बार।
1: ठीक है, तो गाना सुना दे खेसारी लाल के रेडियो सुनने वाला के सबके और खातिर तीन आदमी के।
0: ठीक बाबा, तो गाना प्ले करते नहीं?
1: हाँ जी, कब तक सुनाएंगे? शाम के बाजी की कल बाजी?
0: आज ना तो कल तो बजबे करी, यही दो दिन में बाजी।
1: अच्छा, खेसारी लाल के बजाएंगे गाना।
0: ठीक बा,
1: ठीक बा,
0: सुनाते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
6: जी मैं सुधीर कर रहा हूँ, कोरिंग जिला देवघर झारखंड से मैम।
5: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
5: हम भी ठीक हैं।
6: और आप रेडियो रंजीम के जितने आरजे सर हैं कैसे हैं?
5: सब कोई अच्छा है।
6: आज सुना दीजिए मैम, रक्षाबंधन का गाना।
5: गाने की बोल बता दीजिए।
6: भोजपुरी फिल्म का एक गाना है लता मंगेशकर की आवाज में, इसके बोल हैं रखिया बंधा ले भैया सावन आई, इसके बोल हैं।
5: और गाना सुनाना भी है
6: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो रंजन के जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ दिल से।
5: बिल्कुल जी, तो गाना प्ले करते हैं
6: जी मैम।
5: सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4 FM।
6: थैंक यू मैम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम, राधे श्याम रतिया, रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं बा हमारा तरफ से पकिया।
0: जी जी, आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी तो कदम बढ़ाते हैं फरमाइश की तरफ।
0: बिल्कुल,
1: वो तिरंगा फिल्म का गाना है, इसे समझो न रेशम के तार भैया, यही गाना सुनना है।
0: जी और गाना सुनाना भी है।
1: जी सबसे पहले आपको और रेडियो रिमझिम के सुपर स्टार फैन है हुस्नी आरा मलिक है, संतरा कुशवाहा जी है और सभी गोपालगंज जिला वासियों को, सिवान जिला वासियों को और हम अपने पूरे परिवार के साथ सुनेंगे।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल प्ले।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्कार भारती जी।
3: नमस्कार,
2: समाचार
3: समाचार सर ठीक है बा?
2: काहे आवाज बोछा लेता नहीं दी?
3: थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है।
2: एगो गाना बटे फोटो छलिया के अलग मिठैया बा, अलग अलग बा मिठैया अलगे बटे रखिया बहिन हमारा, ऐसे ही कुछ गाना बटे कर द्वारा गाना बटे राखी
3: छोटो
2: छोटो छली।
3: अच्छा, क्या ना सुना बा?
2: गाना तो सबसे पहले रुगा का सुनावे के बा, ओकरा बाद बानी सोनू भाई, सबीर भाई, बानी महबूब वाला मुस्तफा गुलाम जी, राम कुमार पांडे भैया जी हैं और अक्सरी जी हैं, अमर भाई हैं, कुशुम जी, सबीर और मुसारी जी, तो तमाम श्रोता का गाना सुनिए उन सभी को। गाना देते
3: नमस्कार नमस्कार, गाना सुनते रहिए रेडियो रेंज 91।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: मैं साहेब राव पवार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबो, तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त है। आज ही का दिन है, बोल रहा था कार्यक्रम। जी पहली बार लगाया हूँ फोन, आज ही सुना हूँ मैंने ये कार्यक्रम।
1: अच्छा,
0: बोल रहे मैडम?
1: मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: जी जी,
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है?
0: ब्लैकमेल का है, पल पल दिल के पास सुन रहे।
1: और गाना सुनाना भी है?
0: गुनगुनाना नहीं आता वैसे, मगर फिर भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। पल पल दिल के पार तुम रहते हो। जी जी,
1: इतना अच्छा तो गा रहे हैं।
0: ठीक है, बस ऐसे ही आ जाता है थोड़ा सा।
1: आप अच्छा गा रहे हैं सच्ची में।
0: जी
1: अच्छा गा रहे हैं आप।
0: अच्छा अच्छा जी, थैंक यू।
1: और गाना ये सुनवाना चाहते हैं किसी को?
0: जो रंजन में जो सुनते हैं उन सभी के लिए रहेगा बहन जी, और आपके लिए।
1: जी जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी जी, थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, सलाम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी मैम, कैसे हैं? हम सफरोज अली गोपालगंज से।
6: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
7: जी हम भी अच्छे हैं, लेकिन आपका आवाज कुछ चेंज लग रहा है, लगता है आपका तबीयत सही नहीं है मैम।
6: हाँ थोड़ा सा है,
7: लेकिन ये बता सकते हैं कि भारतीय मैम बोल रही हैं? फिर भी आप ही रिकॉर्डिंग कर रही हैं, मनोरमा मैम नहीं है आज?
6: है मनोरमा मैम।
7: आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गए मैम, हम लगाते लगाते कॉल
6: आधा घंटा लेट है,
7: तो आज तो नहीं चलेगा।
6: देखिए आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, क्योंकि सारा कॉल मैं ही रिकॉर्ड करूंगी।
7: अच्छा, आज सब आप ही करेंगी? मैम उस सोमवार वाला वो मनोरमा में रिकॉर्ड की थी क्या आधा के बाद, क्योंकि सुन रहे थे और रात में 12 बजे चलता है रिपीट हेलो माय चॉइस का, सुन रहे थे हम, 12 बजे चल रहा था।
6: अच्छा,
7: तो आज हमें 11 सा गाना सुनवाइए।
6: बता दीजिए
7: जी, गाने का नाम है मोहब्बत से ज्यादा।
6: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
7: गाना है
6: बोल रहे हैं, गाना सुनाना है।
7: सुनाना है आपको, सभी आरजे को, जितने भी हमारे दोस्त सुनने वाले हैं सभी को।
6: तो अब अभी क्या
7: है? अभी तो मैम हम स्टेशन जा ही रहे थे, तब तक सोचे कि बात कर ले आपसे।
6: अच्छा, तो छपटा से निकल रहे हैं कि?
7: जी मैम हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो सोचे कि इसी टाइम में मिल रहा है तो टाइम में बात कर ले और गाना का फरमाइश कर दे।
6: चलिए, वहाँ का काम खत्म हो गया?
7: जी मैम काम तो खत्म हो गया, इसलिए सोचे निकल जाए। अपना गोपालगंज का बहुत ज्यादा याद आ रहा है, गोपालगंज जैसा तो कोई मतलब जिला ही नहीं है,
6: कहीं लगता ही नहीं। अच्छा
7: जी मैम, कहीं अच्छा नहीं लगता है गोपालगंज के अलावा, गोपालगंज तो बात ही अलग। कहीं भी रहते हैं मैम रेडियो को सुनते रहते हैं और आप लोगों से बात करते रहते हैं। जी मैम, तो गाना फुल सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है।
6: जी बहुत अच्छा गाना है, सुना दूंगी,
7: आपको भी अच्छा लगेगा उम्मीद करते हैं।
6: अच्छा लगेगा क्यों नहीं, गाना ही अच्छा है इतना।
7: जी मैम एडवांस धन्यवाद, आज मनोरमा मैम से बात हो जाती तो अच्छा लगता, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो रहा है आजकल।
6: होगा फिर कभी।
7: जी मैम धन्यवाद, बाय बाय मैम।
6: ओके बाय बाय, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: ओके मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: जी नमस्कार, मैं प्रणाम
1: प्रणाम
0: राजू यादव, ग्राम उपनेगा श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: कैसे हैं आप?
0: हम तो बहन बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वर्ण बिंदा।
1: जी ऐसे ही होना चाहिए।
0: गीत सुना दीजिए बहन।
1: बिल्कुल बता दीजिए, कौन सा गीत?
0: अपनी पसंद का कोई भी रक्षाबंधन गीत चला दीजिए या किसी गीत में शामिल कर दीजिए। और भोजपुरी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, वो चलता है 3-4 बजे।
1: तो भोजपुरी केवल संडे को चलता है।
0: हाँ हाँ, भोजपुरी एक्सप्रेस।
1: हाँ हाँ
0: जी जी बहन प्रणाम।
1: रेडियो रेंज में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहन प्रणाम, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
5: जी नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते।
5: हेलो।
6: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
5: आपका छोटा भाई बोल रहा है, कुमार, चिंतापुर से।
6: अच्छा, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, इसलिए मिस्टेक हो गया पहचान। कैसे हैं आप?
5: और बढ़िया है मैम, आप कैसे?
6: हम भी अच्छे हैं।
5: अच्छा, अब रक्षाबंधन आ रहा है ना?
6: नहीं रहा है।
5: तो आपसे राखी भी बनवाना है ना मैम?
6: बिल्कुल, आइए, बिल्कुल बांध देंगे।
5: अब मालूम ना कहाँ घर है आपका?
6: रेडियो स्टेशन में ही आ जाइए, यहीं पे बांध दिया जाएगा, और क्या।
5: रेडियो स्टेशन में?
6: हाँ हाँ।
5: अच्छा, आएंगे तो आएंगे वहाँ।
6: बिल्कुल आइए।
5: तो कोई आने देगा हम? तो
6: ये तुम मैंने बता सकते, ये कृपा शंकर सर भी बताएंगे।
5: अच्छा, और सोनी सिस्टर कैसी है?
6: वो भी अच्छी
5: है। ये मुनार्मा जी?
6: सब तो अच्छे हैं, ये भी अच्छी है।
5: अच्छा, आपसे बहुत काफी दिन हो गया था बात करने हुए।
6: हाँ।
5: मुनार्मा जी से बात हो रहा था, हम उनसे पूछ रहे थे कि भारती मैम कहाँ चली गई, भारती मैम कहाँ चली गई। वो बोले कि उन लोगों का अभी रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है।
6: नहीं तो वो जो होता है ना, उसमें अभी ना दीजिए।
5: और बताइए क्या हाल चाल है?
6: ठीक है।
5: मौसम कैसा है गोपालगंज में?
6: गोपालगंज का मौसम अभी बहुत ही सुहाना है।
5: अच्छा, रक्षाबंधन से हम 2-4 दिन पहले आ रहे हैं।
6: आइए। बिल्कुल
5: आएंगे, राखियों से बनवा करके गिफ्ट उफ्ट दे करके फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे अपने नोएडा में।
6: मैंने बहुत खुश होंगी क्या इस बार आपके, मतलब आप जा रहे हैं उन लोगों के पास?
5: नहीं, मेरे को आए हुए आज 2 महीना दिन हो गया, पहुँचेगा रक्षाबंधन में तो जाना ही जाना है।
6: हमेशा कभी राखी में घर ही पे न रहे हैं कि कभी दूर भी रहे हैं?
5: नहीं, कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में जाना ही जाना है, रक्षाबंधन में, छठ पूजा में।
6: सब बढ़िया है।
5: हाँ, मम्मी छठ करती है ना, तो छठ पूजा में जाना जरूरी रहता है।
6: कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए?
5: आज गाना सुनना है तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, यही वाली सॉन्ग।
6: कितना अच्छा गाते हैं, फिर भी गाके नहीं सुनाते हैं कभी।
5: कितना अच्छा गाते हैं मैडम, मजबूरी में हम आए हैं ना दिल्ली में, यहाँ शौक से कमाते हैं।
6: अच्छा।
5: मेरे दो भाई विदेश रहते हैं, दुबई, एक का नाम है राजन, एक का नाम है निरंजन।
6: अच्छा।
5: छोटा वाला निरंजन है, निरंजन गुप्ता, और माझिल वाला है वो राजन गुप्ता है।
6: अच्छा।
5: और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा ही एक शादी हुआ है, उन लोग का अभी नहीं हुआ है, अभी उन लोग अभी कमा रहा है, खा रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी अकेला मौज में रहा। अभी घर का प्लानिंग है, अभी घर और बनवा रहे हैं, उसके बाद उनको उन लोग को शादी करेंगे।
6: प्लानिंग के साथ काम अच्छा होता है।
5: और सब मजे में है ना मैम?
6: सब मजे में।
5: ये सॉन्ग आपको सबसे पहले आपको सुनवाना है। आज जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब श्रोताओं का, जितना हिमतापुर को रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको।
6: जी बिल्कुल। हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
5: ठीक है, ओके मैम।
6: ओके,
5: नमस्ते। नमस्ते।
6: नमस्ते।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
0: मधुसरिया से राजू कुमार बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपको?
0: ठीक है, गाना सुनना है।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना सुनना है। शाम है धुआं धुआं।
1: हिंदी सॉन्ग है ना?
0: हाँ हिंदी सॉन्ग
1: जी बिल्कुल। और गाना सुनाना भी है?
0: अभी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को
1: गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ठीक है।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है

0: 8009994911।
1: जी हाँ, 8009994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
2: मैं मोहम्मद यूसुफ अपना मेडिकल हॉल सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
3: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अपना सुनाइए।
3: मेरा ठीक है, तो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
2: चले गए थे उमरा करने, हज करने जाया जाता है ना।
3: हाँ,
2: इसमें मक्का मदीना चले गए थे, एक महीना उसी में लग गया
3: ना,
2: इसलिए बात वहाँ का सिम अलग रहता है ना। हमारे प्रोग्राम आपका सुनते थे, वहाँ भी परेशान होता था तो लगता था आपका। हमारे कॉल नहीं लग रहा था, वहाँ भी सुन रहे थे। मौसम तो ठीक है, वगैरह पानी वगैरह हल्का फुल्का हो ही जा रहा है।
3: हाँ, पानी हो ही जा रहा है और अभी भी थोड़ा मौसम, उतना धूप नहीं है
2: ना, हल्का धूप और छांव दोनों है। आपका कस्टमर इतना हो गया है रिव्यू जिम्यू के, बहुत देर तक करना पड़ता है तब जाकर लगता है। बहुत देर से लगा रहे थे,
3: पढ़े हुए हैं थोड़ा।
2: और सब बढ़िया है, हमको गाना सुनाइएगा।
3: बिल्कुल बता दो।
2: ये नन्हे से फरिश्ते तुमसे ये कैसे आना था।
3: अच्छा, और गाना सुनाना भी है?
2: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खासकर फौजी से रिटायर है कन्हैया प्रसाद गुमनिया के हैं।
3: हाँ।
2: तो सिपाया डाला तो इधर आप आई नहीं होगी, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल, बीटेक कॉलेज सब यहीं पर है, हमारे ही पास है। राजापुर मेला यहीं से जाया जाता है।
3: उधर कभी गए हुए हैं?
2: हाँ, राजापुर मेला आइए एक बार।
3: बिल्कुल आएंगे कभी।
2: हाँ, मेला लगता है तो आपको याद करेंगे कि मेला कल है या परसों है।
3: अच्छा जी, बिल्कुल।
2: हाँ, आइएगा हमारे यहाँ दुकान पर, रुकिएगा अपना मेडिकल हॉल। हाँ, यहीं पर रुकिएगा, नाश्ता पानी यहीं पर होगा, खाना भी आपको खिलाएंगे।
3: अच्छा।
2: आप लोगों से हम जुड़ गए, रेडियो हमको लगा हो गया है।
3: हम लोग हो गया।
2: हाँ, बराबर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
3: चलिए बढ़िया है,
2: ठीक है, सुना दीजिएगा। हो सकता है कल कहीं जाना है।
3: अच्छा, आज नहीं तो कल आ जाएगा।
2: हाँ हाँ, ठीक है, शाम में सुनेगा। ठीक है, धन्यवाद।
3: रेडियो रमजन में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पर में।
0: जी मैम नमस्ते, मैं ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ।
1: जी जी
0: मैम कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताए कैसे हैं?
0: सब आप लोगों का कृपा है, हम लोग भी बढ़िया है, बस काम काज चल रहा है। अभी फिलहाल मैं पुणे में है हम।
1: अच्छा
0: जी, और अपना गोपालगंज का बताइए कैसा है मौसम वहाँ का?
1: गोपालगंज
0: बारिश?
1: मौसम तो अभी सुहाना बना हुआ है, बारिश जैसा ही मौसम हो रहा है अभी।
0: अच्छा अच्छा यहाँ भी तो बादल छाया हुआ है, कभी कभी रुक रुक के बारिश भी हो रहा है। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा मौसम का हो रहता है, बारिश आता जाता रहता है यहाँ का।
1: चलिए उतना से गर्मी नहीं होता होगा ज्यादा।
0: हाँ मैम अभी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्म नहीं है, मौसम तो एकदम ठंडा है, सुहाना ही मौसम है लगभग मानिए तो।
1: वैसे आप क्या काम करते हैं?
0: यहाँ पे मैं फैब्रिकेशन का काम। हाँ, और एक गाना सुनना था मैम,
1: बता दीजिए।
0: मुझे ला कर समझाया दिल ने मेरे, मगर मैंने दिल की न मानी, दीवानी में दीवानी सजन की दीवानी, गाना की बोल रही है। और मेरा दोस्त है प्रमोद और अमित ओम प्रकाश, इन्हीं लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और खास करके रेडियो रिमझिम परिवार को और जितना भी श्रोता सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी।
1: बिल्कुल,
0: लगाते हैं कॉल लगता नहीं है, थोड़ा अफसोस होता है कि, लेकिन भाई अभी भी समझदारी होता है कि भाई कब अगर मेरा चांस मिल जाएगा तो देखा जाएगा, तो लगता है तो इतनी महसूस होता है कि चलिए मेहनत सफल हो गई तो कुछ अलग ही, मतलब
1: कुछ अलग ही
0: अपना। हाँ हाँ, आप लोग से बात होता है तो थोड़ा मन का सुकून मिलता है कि चलो रेडियो रंजन के माध्यम से दूर दूर तक कहाँ कहाँ जितना भी श्रोता सब सुनते हैं, एकजुट होते हैं। जब हेलो माय चॉइस प्रोग्राम जब चालू होता है तो उसका उस टाइम का पल ही कुछ अलग ही है कि हाँ भाई एक परिवार हो जाता है ना, सब जुड़ता है एक साथ, तो अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे जुटते हैं सबको, यहाँ पर अपनी बातें करते हैं।
0: जी जी जी, तो मैं तो बहुत पुराना हूँ रेडियो रंजन का, बहुत कॉल लगाता हूँ लेकिन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो फिर भी मैं जानता हूँ कि अफसोस करने की क्या बात है भाई, सभी दर्दों को सभी लोगों का मन का जितना मुझे खुशी होती होगी नहीं और लोगों को भी खुशी होता होगा ना कि भाई हम भी बात करेंगे, हम भी अपना फरमाइश चॉइस में अपना गाना सुनेंगे। और सबसे हाल चाल जब मिलता है तो हम लोग पुणे में भी रहते हैं तो अच्छा लगता है कि अपना गाँव का अपने जवार का जो भी हम लोग का कटिया में चाहे कहीं भी कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से मालूम पड़ जाता है, चाहे अपने जिला में कोई भी मतलब कार्य होने वाला होता है नया, चाहे कुछ नया नियम आने वाला होता है, तो रेडियो रिमझिम के माध्यम से सब मिलता है तो अच्छा लगता है। तो हम लोग पहले ही एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ भाई अपने जिला में काम होने वाला है, ऐसा हो रहा है, यहाँ ये चीज होने वाला है, तो अच्छा लगता है कि पहले अपना यहाँ नहीं था लेकिन वो आप लोगों की कृपा थी कि हम लोग के लिए, हम लोग खातिर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, अच्छा लगता है। जितना भी अगर तारीफ करेंगे हमारे लिए तो कम है।
1: आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपका।
0: जी जी मैम, आप ठीक है ना?
1: हाँ हाँ, हम सब ठीक है।
0: खाना वाना खाई?
1: हाँ, खाना खा के आते हैं।
0: अच्छा, हम लोग भी ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी के दौरान मेरे को याद आया कि भाई आज कॉल लगाते हैं तो फिर कॉल किया। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लगभग एक घंटा आसपास काम छोड़ दिए थे। जब काम होता है, जब ये दिन आता है तो सोचते पहले कॉल लगाएंगे उसके बाद काम निकल जाएगा। बात आप लोगों से होता है तो लगता है कि हाँ मतलब सुकून दिल का मिल गया कि हाँ मेहनत मेरा जो जारी था वो सफल लग गया तो अच्छा होता है।
1: चलिए, अच्छा लगा
0: आपसे भी बात करके मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके पहले भी जितना भी पहले आपसे पहले जो भी आपका मनोरमा नाम है ना?
1: नहीं।
0: अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम?
1: मेरा नाम भारती।
0: अच्छा भारती, ठीक है मैम।
1: गाना प्ले करें?
0: हाँ मैम, गाना प्ले करिए। नमस्ते।
1: रेडियो

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।
3: Now pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
3: Pick it up,
4: hello.
3: Now pick your phone up,
4: hello.
5: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
6: hello, hello, hello, hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029 94 911। जी हाँ, 8029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी,
7: नमस्ते।
8: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
7: बड़ा लेट सर, सॉरी हम नंबर
8: ना ना सर फोन कर ले रही है तने उन्हें बिजी हो गई है। बोलिए।
7: आवाज प्रसाद बोल रहे हैं, सारे राधे मार्ग से।
8: हाँ हाँ,
7: गाना सुने बा
8: बता दें।
7: जा रे जा रे सुगना जा रे कैद सजनवा से।
8: गाना सुना हूँ बा।
7: हाँ ठाकुर बाले हमारे सर रिकॉर्ड करे की बहुत फोन लगा होता रहे गाना सुना बा। इलेक्शन नहीं बाले जितना रेडियो सुना सब कोई।
8: अच्छा जी, चलिए ठीक बा।
7: सब ठीक बा। हवा भी बहुत ठंडा भी दिन बा।
8: हाँ हाँ, चले फिर ठीक बा। गाना प्ले करते हैं।
7: नमस्ते
8: नमस्ते, सुनते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 91.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: मनोरमा मैम बोल रही है ना?
0: नहीं,
1: भारती मैम बोल रही है।
0: हाँ,
1: तो हम कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, हम भी अच्छे हैं।
0: वैसे आपका नाम बता दीजिएगा।
1: जी मैं पप्पू कुमार साहब पढ़ रहा हूँ ना, बड़हरिया से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम मैं बढ़िया है, अपना सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: और सब भारतीय लोग अच्छे हैं?
0: हाँ, सब कोई ठीक है।
1: तो मैम गाना सुना दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: इरंगा फिल्म में जो राखी बंधन का गाना है वही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगे?
1: और मैम गाना जितना भी मेरे भाई बहन है सभी सुनेंगे, सभी श्रोता आप भी सुनिएगा, सभी आर्जे लोग भी सुनेंगे।
0: बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: सीधा सीधी बताएं कि स्टाइल में बताएं।
3: सीधा सीधी क्या बताएं, स्टाइल में बताओ।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल यहाँ, जाने हो कल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ऑलराइट।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।